आप जो देते हैं वही पाते हैं। अंग्रेजी में आपने कई बार सुना होगा, यू रीप व्हाट यू सो और व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें सिखाता है कि हमारे द्वारा दिए गए विचार, भावनाएं और कर्म ही हमें वापस मिलते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सकारात्मकता और प्रेम दिखाते हैं तो हमें भी वही वापस मिलता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारे विचार और कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं।

सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण FM 103.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं और इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज के पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगर रुबा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2024 के अगस्त महीने के आज 3 तारीख है और दिन है सोमवार। आज के हमारे पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता दी नियोग। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हमारी पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा से।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत।

6:40 पर आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

7:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम मॉर्निंग इंपोर्टेनमेंट। 7:35 पर आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सदा बहार।

और इन सब के अलावा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुनेंगे 8:30 पर।

9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्मी गपशप। 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

10:10 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओं, ये था आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम भक्ति गीत के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कारगर और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक आनंद से भरपूर कार्यक्रम भक्ति गीत में। श्रोताओं, हर शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के स्मरण से की जाती है। वह विघ्नहर्ता है, बुद्धि और विवेक के दाता हैं और मंगलमय जीवन के प्रतीक हैं। जब हम सच्चे मन से गणपति बप्पा का नाम लेते हैं तो मन से भय दूर हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में नई नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान गणेश हमें यह भी सिखाते हैं कि ज्ञान के साथ विनम्रता, शक्ति के साथ करुणा और सफलता के साथ सदाचार का होना भी उतना ही आवश्यक है। उनके विशाल कान हमें सबकी बात धैर्यपूर्वक सुनने की प्रेरणा देते हैं। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती हैं और उनकी सुंद हमें हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की सीख देती है। आज के इस पावन कार्यक्रम में हम सुनने जा रहे हैं भक्ति संगीत के सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल की मधुर और भक्तिमय आवाज में प्रस्तुत श्री गणेश अमृत वाणी। ये अमृत वाणी केवल एक भजन नहीं बल्कि श्री गणेश की महिमा, कृपा और दिव्य आशीर्वाद का मधुर स्मरण है, जो मन को शांति और आत्मा को भक्ति से सराबोर कर लेता है। तो आइए श्रोताओं, अपने मन के सभी विघ्नों और चिंताओं को गणपति बाप्पा के चरणों में समर्पित करें और भक्ति के इस पावन यात्रा का शुभारंभ करें। प्रस्तुत है श्री गणेश अमृतवाणी अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

श्रोताओं, इसी के साथ आज के भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।

हियाकस्वानी इतानगर तनगादम रोगम जब अमदागला हुआ पोलोग अलो लोम अरहोगो गलो मेंकेन अबालोक मेलें जिदाग नांगो मार्योमत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मु मलोग जीत अलो दोबर ओगो नासा मुक्त युवा पर विकसित भारत संकल्प अभियान अमने बार्सुलीब इदाकला मेनला इजा मुग भारत गुदा हिगिम ने विकसित भारत दोखब ओगो गुलिन हुबा यारु दोखब मोदे कुयम ने हिलोमलोग गुसा हुसना युत निजर यामे गाद नुन कुनाक कादे कुना अमला मेंतु ओकलगा ब नुनुक आयग बदु ओपो अमने ओक टिक टुकपिनी अमने तुमिलम कामा दोब लरुकु प्लागी दुनाक अमला सिन दोयतु ओक ओकलगा ब नुनु नोक आय ओगो नोक आय अमने दोदिक तिदिक ओक दिंगनि कोने दोकपे लागी मानाक अमला सिन दिंचि जाब मेंतातु ओके गुसा हुसना निर यामे गद नुनु योब इलासिन दोदिक तिदिक ड्रग्स अबा हिगिम ने अपा रुकु प्लागी दुनाक अमलासिन मेंदी मेंदी ला मेंतु ओके मु मेंताला एवरी संडे जीत अलो एमने योब इलासिन ड्रग्स अबा हिगिम ने अल रुकुमा नाकुक एमनम एवरनेस प्रोग्राम लोक्सिन इगमेंग रुकु बलो अल दुनाक एमला गुमिन होइनम सिन मेंपा हितुकु ओके यग अनाबो यलासिन आयग अपाओ दोदिक तिदिक ड्रग्स गो दोदुकु एमला एम्पा का पा नाम गो काकियोम सिन रुप्त माब आजन अरुम एमने मेंजी गेकला योना यो लोक कुबे बदा लोक अलिब एपा मोदे दोक को एमला बदा गो मारु तोकला का एमला सिन मेंतम तु ओगो स्कूल कॉलेज ओके यूनिवर्सिटी लोक टीचर्स लेक्चरर्स ओके प्रोफेसर गादम सिन एपिल दागला मेंतु नुनु दुमुम तमाब ड्रग्स ग अबा हिगिम ने रेगुलर ब टका का पा हिदाक कुला अलिब मेंतम मुतम नाम अवेयरनेस कैंपिंग लोक आयगे कैंपस अरालोसिन इगमेंग रु तोकला का अमलासिन दिनचि जाब मेंगम दिजिनका

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुप्रभात दोस्तों, सुबह की सुनहरी किरणों के साथ, ताजी हवा की ठंडक और नई उम्मीद के साथ आप सभी का स्वागत है आपका पसंदीदा मॉर्निंग शो सुबह सवेरे में। मैं हूँ आपका अपना आरजे कारगर और आज फिर हम तैयार हैं आपके साथ एक ऐसी सुबह बिताने के लिए जहाँ होगी बात आपकी सेहत, फिटनेस और खुशहाल जीवन की। दोस्तों कहते हैं अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। इसलिए सुबह सवेरे में हम लेकर आते हैं योग के आसान और फायदेमंद आसन और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारियां जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बनाए बेहतर। तो तैयार हो जाइए हेल्दी, हैप्पी और पॉजिटिव मॉर्निंग के लिए क्योंकि शुरू हो चुका है सुबह सवेरे। दोस्तों आज के सुबह सवेरे सेगमेंट के योग सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को नियंत्रण रखने के लिए कुछ उपयोगी योगासन के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऐसे समस्या के बारे में जो आजकल बहुत आम हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, गलत खानपान और कम नींद और शारीरिक गतिविधि के कारण बहुत से लोग ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं। योग शरीर और मन को शांत करने, तनाव कम करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद कर सकता है। नियमित योग के साथ सही खानपान और डॉक्टर की सलाह का पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ आसान और लाभदायक योगासन हाई ब्लड प्रेशर के लिए। पहला है शवासन। तनाव कम करने का ये सबसे आसान आसन है। इसे करने के लिए पीठ के बल आराम से लेट जाएं, दोनों हाथों और पैरों को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करके धीरे धीरे गहरी सांस लें। 5 से 10 मिनट तक इसी स्थिति में रहें। इससे मानसिक तनाव कम करने में मदद करता है, शरीर और दिमाग को आराम देता है। तनाव के कारण बनने वाली रक्तचाप को नियंत्रण रखने में सहायक हो सकता है।

अगला है वज्रासन। ये मन को शांत करने वाला आसन है और इसे करने के लिए घुटनों को मोड़ कर एरियो पर बैठ जाए, रीढ़ को सीधा रखे, हाथों को घुटनों पर रखे। 5 से 10 मिनट तक आराम से बैठे। इसके फायदे हैं, मन को शांत करता है, पाचन बेहतर करने में मदद करता है और शरीर को स्थिरता और आराम देता है।

अगला है बालासन। ये शरीर को आराम देने वाला आसन है। इसे करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएं, धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, माथे को जमीन के पास रखें और हाथ आगे फैलाएं। कुछ देर इसी मुद्रा में रहें। इसके फायदे हैं, तनाव और थकान कम करने में मदद करता है, गर्दन, कंधे और पीठ को आराम देता है, साथ ही मन को शांत करता है।

अगला है मकरासन। ये रिलैक्सेशन के लिए है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को मोड़कर तुद्दी या माथे के नीचे रखें, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। 5 मिनट तक अभ्यास करें। इससे शरीर की थकान कम करता है, सांसों को सामान्य करने में मदद करता है, शरीर को गहरी रिलैक्सेशन देता है।

अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम, सांसों का संतुलन। इसे करने के लिए आरामदायक मुद्रा में बैठे, दाहिनी हाथ से एक नथुने को बंद करके दूसरे

सांस ले और फिर दूसरे नतुने से सांस छोड़े। इसे आप धीरे धीरे 5 से 10 मिनट करें। इसके फायदे हैं, तनाव कम करने में मदद करता है, मन को शांत करता है, सांस लेने की प्रक्रिया बेहतर होती है।

अगला है तारासन। ये शरीर के संतुलन के लिए है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, शरीर को ऊपर की ओर खींचे, कुछ सेकंड रुके और वापस आए। इससे शरीर का संतुलन बेहतर करता है, पोस्चर सुधारने में मदद करता है, शरीर को सक्रिय बनाता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां। योग हमेशा धीरे धीरे और आराम से करें। सांस रोक कर रखने वाले कठिन अभ्यास ना करें। बहुत ज्यादा जोर लगाने पर वाले आसन करने से बचें। नियमित रूप से अपना बीपी चेकअप करते रहें। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां समय पर लेते रहें। आज का योग मैसेज है दोस्तों, योग सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाता है। जब मन शांत होता है, तनाव कम होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। तो आइए कुछ मिनट योग को दें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम उठाएं। इसी के साथ आज का योग सेगमेंट यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे में एक नए योग और नई स्वस्थ जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, शांत रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए कार्यक्रम में लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में खिलाड़ी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत।

0: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम को आगे और देखते हैं आज के हेल्थ सेगमेंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी सेहत की नींव के बारे में, यानी बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार और सही तरीके से डाइटिंग करने के फायदे। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है हम ऐसा भोजन करें जिसमें शरीर को भी सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मिल सके, क्योंकि दोस्तों अच्छा भोजन ही अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट यानी ऐसा संतुलित भोजन जिसमें शरीर की जरूरत के अनुसार सभी पोषक तत्व शामिल हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा के लिए, प्रोटीन मांसपेशियों और शरीर के मरम्मत के लिए, हेल्दी फैट्स शरीर के जरूरी कार्यों के लिए, विटामिन और मिनरल्स रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर के सही

संचालन के लिए, पानी शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए, फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर रखने के लिए। तो इन सभी का होना बैलेंस डाइट कहलाता है। और बैलेंस डाइट के महत्वपूर्ण फायदे क्या हैं? इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, अगर हमारा भोजन संतुलित होता है तो शरीर को दिन भर काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी, थकान कम महसूस होती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर एक्टिव रहता है और वजन नियंत्रित रखने में भी मदद है बैलेंस डाइट। सही डाइट का मतलब खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि सही मात्रा में और सही समय पर पौष्टिक भोजन करना है। वजन को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है, शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने का खतरा कम होता है और फिटनेस बेहतर होती है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। फल, सब्जियां, दालें और पौष्टिक भोजन शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल देते हैं। शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। बार बार होने वाले संक्रमण से बचाव में मदद मिलती है और पाचन तंत्र बेहतर होता है। फाइबर से भरपूर भोजन जैसे सब्जियां, फल, साबुत अनाज पाचन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद। अच्छा खान पान शरीर के अंदर से खूबसूरती बढ़ाता है, जैसे त्वचा में निखार आता है, बाल मजबूत और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। आइए अब बात करते हैं सही डाइटिंग के फायदे। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग वजन कम करने के लिए खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हेल्दी डाइटिंग का मतलब है कम खाना नहीं, बल्कि सही खाना है। हेल्दी डाइटिंग के फायदे हैं, वजन कम करने में मदद, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, शरीर हल्का और एक्टिव महसूस करता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। रोज की डाइट में क्या शामिल करें? सुबह गुनगुना पानी, पौष्टिक नाश्ता जैसे दलिया, पोहा, फल या अंडा, दोपहर में दाल, हरी सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, रात को हल्का और संतुलित भोजन करें। बीच बीच में मेवे, फल और हेल्दी स्नैक ले सकते हैं। किन चीजों से बचना चाहिए? ज्यादा तला हुआ भोजन, बहुत अधिक मीठा, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, बिना जरूरत के क्रश डाइट। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए महंगी भोजन की नहीं, बल्कि सही आदतों की जरूरत होती है। एक संतुलित आहार, नियमित योग, थोड़ी एक्सरसाइज और अच्छी नींद, यही है एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का मंत्र। तो आज से ही अपनी थाली को बनाएं स्वादिष्ट भी और पौष्टिक भी। इसी के साथ आज का हेल्थ सेगमेंट यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के एक नई स्वस्थ जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, पीते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आइए सुबह सवेरे के अंत में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत अभिजीत की आवाजों में।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

Sì, a caspani tana ga jirokla, sero ka tana programa ta mi miling pi, sero nunu ka pe japa tana pu yumi ta pakendo, sero ka tana pu yulu ko yin si, dusutung. Prime Minister Narendra Modi bu yo India mi biksit Bharat muk pakoda, ganda ka yu ta tangka Apollo Henju Mitro tamodo pamuk kendo lalu kone. Mo New Delhi so bu yo nasamuk yuva por biksit Bharat sankalp abhiyan mi virtually launch mubne. मो अभियान में लॉन्च मुरीदा ओक इसी पोलो में का अपकने तो पा 100 वीक के जन भागीदारी कैंपेन में मुरीग किंदोला लोगों ने पीएम मोदी बोयो गंडा सो संडे कमिया वीकली एक्टिविटीज अवेयरनेस लुमी मुख केंदो हो पब्लिक अतामित्रो मु बुनियादो पाला लुपाने पीएम मोदी प्रोग्राम ओक उरु अतामित्रो मीनू हेने यू लहा लहे मपा दिसतान सामुन अतामी लुको दो पाला हालुने मो स्कूल्स कॉलेजेस ला यूनिवर्सिटी का टीचर ला प्रोफेसर अतामित्रो स्टूडेंट लुमी इसी पलु आउ मी नितांपा मुदगुदु हिमत्रो लुको ला लुस केंदो ला लुने ओ कैंपस सो पुंगो पुंगो अवेयरनेस कैंपेन त्रो मुक दो पाला हल्लु पने नशा मुक्त भारत नशा मुक्त अरुणाचल के 10 करोड़ एडिक्शन फ्री फ्लेज मेगा कैंपेन के स्टेट लेवल प्रोग्राम में ईटानगर जोलांग सो ब्रह्मा कुमारी राजयोगा सेंटर सो बुयो को मुरिगने को प्रोग्राम सो मिनिस्टर मामा नातुंग चीफ गेस्ट हो डीजीपी शिव दर्शन सिंह जमवाल गेस्ट ऑफ ऑनर पर आने से का कैंपेन में ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन एंड डी एडिक्शन सेंटर लु नेशनल मिनिस्ट्रीज लुका आगे ऑर्गेनाइज मुक दो कैंपेन से ड्रग लुका एडिक्शन में अपाला अपोका सांगो गया गोपा लुकोला मुक दो लालू दो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह बुयो साउथ वेस्ट मानसून के प्रत इफेक्टिव

0: States Atampa Center ke State Disaster Response Fund ho ke 2117.85 crore rupees me advance release mutapa approve mubne. So Arunachal Pradesh for financial year 2026-27 ka first installment 44.55 crore rupees do lalu ko do. Home Ministry ok government lu state government agya flood situation me continuous pa kage do lukone. O government lu NDRF team la digo tangolo me pota pokando lalu ko do. Arunachal la Assam ok nena damage tukne him trokado pa center ok interministerial central team is me trobuyo appoint mubne. Governor Lieutenant General K.T. Parnaik retired Buyo, Miss January Talila, Miss Hachu Lombo me, Ladakh Kajanska regions of Mount Kun, 7,077 meters ke summit mujako asambala mune. O anyer Arunachal Pradesh ok challenge me mujane history ok yim ok Kapyojapa Mountaineer Shido lalukone. Minister for Education P.D. Sona Buyo, Dipro CEO Mika official WhatsApp channel me launch mupne. Si public atampa timely information bilindo pa platform ko ne lalukodo. Social media post so minister sona buyo, WhatsApp channel so government notification, public advisories, development updates, welfare schemes, important announcements la district information lumi, kapala kindo lalukone. Minister Shi Yomika atami verified update information lumi paido pa channel mi join mudo pa lalupane. Arunachal Pradesh University Pasighat Sobuyo Nasamukt Bharat ke program mimugne so assistant registrar academics likhar inchin welcome address so Nasamukt Bharat campaign ke aim la importance lo miluko gulamugne program so Glasgow Commonwealth Games ke solo final day so India judo la track cycling so medal paido pamukakendo judo challenges so India ke Avtar Singh men's 100 kg so Yes, Gangas, men 100 kg la Isrup Narang, women 78 kg somolu compete mukindo. O Ronaldo light on jump, track cycling men's 1000 meter harkasela mukindo. O para track cycling event mitro solopa schedule mutu. Buyo Commonwealth Games 2026 so India 16 medal chibla, port place so chado kula lukodo. Surokatanupuyuluko sanahum kane.
1: Sisnano tanibusimi tapakendo.
2: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आप बतानी श्रोताओं का समाचार आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जहां होती है दिल से दिल की बात हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और अगले कुछ मिनटों तक आपका साथी बनकर लेकर आया हूं मॉर्निंग इंटरटेनमेंट कार्यक्रम दोस्तों बदलती दुनिया के साथ हर पल कुछ नया घट रहा है ऐसे में दिन की शुरुआत सही और भरोसेमंद जानकारी के साथ हो तो पूरा दिन बेहतर बन जाता है इसलिए हम लेकर आए हैं देश दुनिया और अपने अरुणाचल प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें तो अगर आपके हाथ में है सुबह की गर्मा गर्म चाय या कॉफी का प्याला तो उसकी हर चुस्की के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि यही मिलेगी हर बड़ी खबर हर जरूरी जानकारी और बेहतरीन प्रस्तुति तो आइए देखते हैं आज के 3 अगस्त के ताजा राष्ट्र खबरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर एक स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण करना है विभिन्न राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पिंगली वेंकैया की 150वीं जयंती पर राष्ट्र ने दी श्रद्धांजलि आज भारतीय राष्ट्र ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की 115वीं जयंती पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित

आयोजित किए गए। अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों से नदी नालों के पास जाने से बचने की अपील की गई है। केरल में बारिश का कहर, जनजीवन प्रभावित। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण केरल के कई जिलों में बाढ़ जैसी हालात बन गई हैं। कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। राहत और बचाव दलों को तैनात किया गया है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा, कोयला उत्पादन में नई उपलब्धि। केंद्र सरकार ने कहा कि व्यावसायिक कोयला खनन, कमर्शियल कोल माइनिंग के विस्तार से भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इससे रोजगार और औद्योगिक उत्पादन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार एक ड्रोन निर्माण संयंत्र को भी निशाना बना गया है। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने भी अपने रक्षा अभियानों को तेज किया है। इंडोनेशिया में नौका हादसा। इंडोनेशिया में एक यात्री नौका में आग लगने के बाद बड़ा हादसा हुआ। कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि दर्जनों यात्रियों की तलाश जारी है। राहत और बचाव अभियान जारी है। मध्य पूर्व में तनाव बरकरार। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को लेकर अपने रुख को दोहराते हुए सुरक्षा संबंधी कड़े बयान दिए हैं। क्षेत्र में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। अमेरिका के इडोहा में गोलाबारी की घटना की जांच जारी। अमेरिका के इडोहो राज्य में हुई हालिया गोलाबारी की घटना की जांच जारी है। स्थानीय पुलिस और संघीय एजेंसियों घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है। नेटो देशों ने यूरोपीय सुरक्षा पर चर्चा तेज की। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूरोप की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए नेटो देशों ने रक्षा सहयोग और अमेरिकी तैयारियों पर नई चर्चाएं शुरू की है। तो दोस्तों, ये था आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रुक करते हैं ग्लोस्को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत का अंतिम प्रदर्शन पर। भारत ने ग्लोस्को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीते हैं। पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारत का अंतिम पदक तालिका इस प्रकार है। स्वर्ण 13, रजत 17, कांस्य 9, कुल पदक है 39। किन खेलों में मिले हैं पदक? बॉक्सिंग सर्वाधिक सफलता। भारत ने रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक जीते और कुल 10 पदक हासिल किए। वेटलिफ्टिंग कई स्वर्ण और रजत पदक। मीराबाई चानू ने स्वर्ण जीतकर भारत की शुरुआत शानदार बनाई। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा सहित भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने कई पदक अपने नाम किए। साइकिलिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। बैडमिंटन और अन्य स्पर्धाओं में भी भारत ने महत्वपूर्ण पदक जीते। तो विशेष उपलब्धि है, भारत ने 39 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। बॉक्सिंग भारत का सबसे सफल खेल रहा। समापन समारोह में ग्लोस्को ने आधिकारिक रूप से 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की जिम्मेदारी अहमदाबाद भारत को सौंपी। दोस्तों, रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। गवर्नर CM ज्वाइन नेशन वाइड एंटी ड्रग कैंपेन। रविवार को गवर्नर KT फरनाइक ने लोक भवन से देश के युवाओं के साथ वर्चुअल बातचीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त भारत फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने 100 हफ्ते चलने वाले देशव्यापी जनभागीदारी अभियान की शुरुआत की और देश भर में 10,000 से ज्यादा जगहों पर मौजूद 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को संबोधित किया। इन जगहों में अरुणाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थान और युवा केंद्र भी शामिल थे। इस देशव्यापी कार्यक्रम में नशा मुक्त, स्वस्थ और विकसित भारत बनाने में युवाओं की अहम भूमिका पर जोर दिया गया। फुअर कन्विक्शन फ्यूलिंग NDPS केसेस। ड्रग सप्लाई
करने वाले

वालों और बेचने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों की लगातार कोशिशों के बावजूद अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों में ड्रग्स की बरामदगी और गिरफ्तारियों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि बरामद की गई मात्रा ज्यादातर कम होती है, लेकिन ड्रग्स बेचने के मामले लगभग हर दूसरे दिन सामने आते हैं। गृह मंत्रालय ने इस साल फरवरी में लोकसभा को बताया कि 2020 से नवंबर 2025 के बीच अरुणाचल में 20,000 ज्यादा किलोग्राम से नशीली पदार्थ बरामद किए गए, जिनमें गांजा और अफीम शामिल है। गांजे की सबसे ज्यादा बरामदगी 7,002 किलोग्राम 2025 में दर्ज की गई। ZSI sets roadmap for NMHS wild pollinator project in अरुणाचल। ऊंचाई वाले इलाकों की जैव विविधता को बचाने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर जोधपुर में मौजूद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डेजर्ट रीजनल सेंटर ने पूरे अरुणाचल प्रदेश में एक व्यापक फील्ड सर्वे रोडमैप तैयार किया है। यह रणनीतिक पहल एक बहुत जरूरी रिसर्च प्रोजेक्ट का मुख्य आधार है, जिसका नाम है हिमालय जंगली पराग गुणको यानी वाइल्ड पॉलिनेटर्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए इकोसिस्टम का आकलन। जैव विविधता संरक्षण की दिशा में हिमालय बम्बल बीज के लंबे समय तक निगरानी और आकलन के लिए कार्यवाही। गवर्नर कॉन्ग्रेचुलेट्स तालु एन लोम्बो। गवर्नर केटी फरनाइक ने लद्दाख के जांस्कर इलाके में माउंट खून की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के शानदार उपलब्धि के लिए जनवरी ताली और हाचू लोम्बो की तारीफ की है। इस उपलब्धि को राज्य के लिए बेहद गर्व का पल बताते हुए गवर्नर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की यह दोनों महिला पर्वतारोही इस मुश्किल चोटी को फतेह करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। स्टक इन जैम ए कम्यूटर्स अकाउंट ऑफ ट्रैफिक इन ईटानगर एंड फासीघाट। तो दोस्तों, आज के न्यूज सेगमेंट में बस इतना ही। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। आइए सुबह सवेरी के अगले भाग में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाजों में।

दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट में। आइए इस कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत कुमार शानू और लता मंगेशकर की आवाजों में।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग एंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

0: Actuellement, New Delhi Lok, mais pas là, Ridoko. Ce que ne dedenno. Sengcha ne dedenno, hola. Drugs sum, tengma doma beke, ok, alamana chiz nga, dima beke la, nasa mukta. Ce que ne nasa mukta, yuva, for biksit barat, sum. Lincoln Saptago Varibam Dukhvala Mipaduku Union Health Minister Jagat Prasad Nadda National Eligibility Test Cum Entrance Test for Postgraduate NEET PG 2026 Nga Alarongba Test Rimu Dukhvala Test Nga Lamu Dukhvala Preparedness for the logama go teoka fakmin slak pula degani khubala min faduku ni test nga agos pologa alu chom ne natar tolo examination nga jik sumuye kunela min faduku CWG 2026 nga gloss go lo liksukulo India nga medal tally lo fourth rank lo apukula mifaduku so India ga ba gold medal tagaring gula taom gula silver medal tagaring gula takkan gula bronze medal tak kya go yalin gay kula medal tally lo fourth rank lo apukunela mifalinduku Arunachal Pradesh ke Governor Lieutenant General K.T. Farnaik bin Fakunam nga Hejar akkan ngula changkan ngula akkan meters kuna au kuna Modi Mount Kun sum alarong ba Gichane Miss January tali nila Miss Hechu Lombo ben nga alarong ba mangdukuna la bin Miss January Talila, Miss Hechu Lombo Banyi, Ladakh lo Jankar region lo Sakene Modinga, Gimi Chanamsi, Arunachal Pradesh ke Nijar Dedege, First Women List lo Adukunela, Mifalinduku. Arunachal Pradesh ke Education Minister P.D. Sona Bifakunam nga Siomi district dipro ga official whatsapp guni melindo kunela mi falindo ko sekena whatsapp lo gumananga ining sayanga paute kunela mi falindo ko so whatsapp lo gumananga authentic information dadanga public ni mananga lakhangba paujite kunela mi fadado ko suruga tagin ga mi nyu mitam sangka hebo
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद कार्यक्रम सदा बहार के साथ कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें
2: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bank to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river banks or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कर्ग और प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, और अगर उस सुबह की शुरुआत हो ताजा मौसम की जानकारी और मधुर संगीत के साथ, तो पूरा दिन और भी खूबसूरत बन जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के राजधानी ईटानगर का मौसम का हाल। आज सुबह ईटानगर में आसमान पर बादलों का घेरा बना हुआ है, मौसम सुहावना है और तापमान लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दोपहर तक तापमान बढ़कर करीब 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। धूप अगर निकलेगी भी तो ज्यादा देर तक नहीं दिखेगी। बादलों की आवाजाही पूरे दिन बनी रहेगी। बारिश की बात करें तो आज दिन भर बीच बीच में बारिश या रुक रुक कर बौछारे पड़ने की पूरी संभावना है। किसी भी समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, इसलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो छाता या रेनकोट साथ रखना बिल्कुल ना भूलें। हवा हल्की सी मध्यम गति से चलती रहेगी, जिससे मौसम आरामदायक महसूस होगा और तेज गर्मी नहीं लगेगी। शाम के समय भी बादल छाए रहने की संभावना है। बीच बीच में फुहारे पड़ सकती हैं और तापमान घटकर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज ईटानगर का मौसम रहेगा बादलों से घिरा हुआ, रुक रुक कर बारिश की संभावना के साथ। आज पूरे दिन आरामदायक तथा सुहावना मौसम रहने वाला है। तो अगर आज आपका कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम है तो मौसम का साथ देने के लिए एक छाता जरूर साथ रखिए। और अब इसी सुहाने मौसम के साथ बढ़ते हैं एक खूबसूरत सदाबहार गीत की ओर, सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल जरूर आता है जब अचानक किसी से मुलाकात होती है और देखते ही देखते दिल की दुनिया बदलने लगती है। चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, धड़कनें तेज हो जाती हैं और दिल बस इतना ही कहता है, कोई मिल गया।

दोस्तों, अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम सदाबहार, जहां हर गीत अपने साथ लेकर आता है यादों की एक खूबसूरत कहानी। और अब बारी है 90 के दशक के एक बेहद मस्ती भरे रोमांटिक और चुलबुले गीत की, प्यार में जब दिल किसी के लिए धड़कने लगे, जब मोहब्बत में इंसान थोड़ा सा शरारती, थोड़ा सा दीवाना हो जाए तो उस एहसास को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। इसे प्यार और मस्ती भरे अंदाज को पेश करता है फिल्म शोला और शबनम का ये शानदार गीत। आवाज दी है शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने और बोल लिखे हैं अनजान।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और एक्सेट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में AI की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह

0: कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा जबकि 4:00 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए 7:00 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, हम लौटेंगे अगले कार्यक्रम हेलो ईटानगर के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर।

दोस्तों कहते हैं कि जिस दिन की शुरुआत अच्छी सोच, अच्छी जानकारी और अच्छे संगीत से हो, वो पूरा दिन यादगार बन जाता है। तो बस अगले कुछ पलों तक हम आपके इसी खूबसूरत सफर के साथ

बने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में होगा बहुत कुछ खास, क्योंकि ट्रेन हिस्ट्री सेगमेंट में हम जानेंगे आज के दिन इतिहास के पन्नों में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं दर्ज हुई जिन्होंने भारत और दुनिया का नई दिशा दी, और जानेंगे टुडे इन स्पेशल डे स्पेशल पर। सबसे पहले आइए देखते हैं टुडे इन हिस्ट्री पर, रुक करते हैं भारत के नजरिए से। 2004 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई उड़ान। 3 अगस्त 2004 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV F01 मिशन के माध्यम से एडुसेट G-SAT-3 उपग्रह के प्रक्षेपण की तैयारी के अंतिम चरण पूरे किए। ये भारत का पहला समर्पित शैक्षिक उपग्रह था जिसने देश में दूरस्थ शिक्षा को नई दिशा दी। 1957 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कार्य शुरू किया। 3 अगस्त वर्ष 1957 को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार करते हुए देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान के रूप में कार्य शुरू किया। आज एम्स भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थाओं में गिना जाता है। 1914 भारत में प्रथम विश्व युद्ध के लिए सैन्य तैयारियां। 3 अगस्त 1914 को यूरोप में युद्ध की स्थिति बनने के बाद तत्कालीन ब्रिटिश भारत में सेना की लामबंदी शुरू हुई। आगे चलकर लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न मोर्चों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन को मिला नया जन समर्थन। 3 अगस्त के दिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रांतों में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी सामान के बहिष्कार के लिए जन सेवाएं आयोजित की गई। इन अभियानों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रुक करते हैं विश्व के इतिहास पर एक नजर। वर्ष 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा शुरू। 3 अगस्त 1492 को इटाली नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुई। इसी अभियान के दौरान वे 3 अक्टूबर वर्ष 1992 में अमेरिका पहुंचे, जिसने विश्व इतिहास की दिशा बदल दी। 1914 जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यह घटना प्रथम विश्व युद्ध के विस्तार का महत्वपूर्ण चरण थी, और इसके बाद यूरोप के कई देश युद्ध में शामिल हो गए। वर्ष 1958 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी ने उत्तरी ध्रुव पर किया पार किया। 3 अगस्त 1958 को अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी USS नोटिलस पहली बार समुद्र के भीतर से उत्तरी ध्रुव के नीचे से सफलतापूर्वक गुजरी। यह नौसैनिक और वैज्ञानिक इतिहास की बड़ी उपलब्धि थी। तो दोस्तों, 3 अगस्त का दिन इतिहास में खोज, विज्ञान, शिक्षा, खेल और विश्व राजनीति की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। एक ओर कोलंबस की समुद्री यात्रा ने दुनिया के भूगोल को बदल दिया, तो दूसरी ओर भारत ने शिक्षा, विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाए। इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर दिन अपने साथ संघर्ष, उपलब्धि और नई शुरुआत की कहानी लेकर आता है। अब समय है एक खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते रहिए हेलो ईटानगर, सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

दोस्तों, हेलो ईटानगर कार्यक्रम में अब रुक करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे स्पेशल पर एक नज़र। आज 3 अगस्त को विश्व लॉन्ग दिवस यानी वर्ल्ड क्लॉक डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लौंग के औषधीय, पोषण संबंधी और आर्थिक महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। लौंग केवल एक मसाला ही नहीं बल्कि आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में सदियों से उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण औषधि भी है। लौंग क्या है? लौंग वास्तव में लौंग के पेड़ की सूखी हुई फूल की कली होती है। इसका वैज्ञानिक नाम साइजियम एरोमेटिकम है। इसकी खुशबू और स्वाद के कारण इसका उपयोग दुनिया भर के व्यंजनों, मिठाइयों, पेय पदार्थों और मसालों में किया जाता है। लौंग का महत्व। लौंग में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व और प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं, जैसे यूजिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज, प्राकृतिक रोग निरोधी। इसी कारण लौंग का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में भी व्यापक रूप से किया जाता है। लौंग के प्रमुख लाभ हैं: दांत दर्द और मसूड़ों की तकलीफ में राहत देने में सहायक, पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मददगार, सर्दी, खांसी और गले की खराश में उपयोगी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को समर्थन देने में सहायक, एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, हमारी रसोई में मौजूद छोटी सी लौंग स्वाद ही नहीं, सेहत का भी खजाना है। प्रकृति ने हमें ऐसी अनेक अनमोल उपहार दिए हैं जिनका सही उपयोग हमें स्वस्थ जीवन की ओर ले जा सकता है। आइए इस अवसर पर हम स्वस्थ भोजन, संतुलित जीवन शैली और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब बढ़ते हैं एक सुकून भरे मधुर गीत की ओर। सुनते रहिए हेलो ईटानगर, सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा चुनावों पर सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है।

0: एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। गोवा ने मजबूत राजकोषीय वृद्धि दर्ज की है। जुलाई 2026 के दौरान राज्य को केंद्र सरकार से कर वितरण के तौर पर 398 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। साथ ही वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में भी अच्छी वृद्धि हुई। राज्य का कुल जीएसटी संग्रह जुलाई 2026 में 622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के 584 करोड़ रुपए से बढ़कर 7% की वृद्धि को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has launched Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. In his address, the Prime Minister said that achieving Viksit Bharat fundamentally requires a physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation completely free from self-destructive habits.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: Outlining the campaign's ambitious 100-week roadmap, Mr. Modi detailed how every upcoming Sunday will feature dedicated activities spanning art, culture, sports and meditation to continually engage new participants. He said that the coming 100 Sundays will absolutely become 100 strong steps in the direction of a completely drug-free India. The meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries will be held under the chairship of India from today till tomorrow in Lucknow. India's BRICS chairship is guided by the overarching theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, BRICS. The meeting aims on strengthening core BRICS statistical products, innovation and reform in national statistical systems, data dissemination and accessibility. Counting of votes is underway for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for the Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh was held on the 30th of last month. Postal ballots is being counted first, followed by the counting of votes recorded in electronic voting machines. The Election Commission has made robust security arrangements to ensure smooth counting in all 3 states. President Draupadi Murmu will arrive in Odisha today on a 3-day visit. During her stay, she will inaugurate Jagatguru Kripalu University in Cuttack and participate in a series of official, educational and cultural programs in Bhubaneswar, Cuttack and Ganjam districts. President Draupadi Murmu will arrive in Bhubaneswar this afternoon. Later in the evening, she will inaugurate Jagat Kripalu University at Banara near Cuttack. The first Monday of the holy month of Sawan is being celebrated with great devotion today, bringing a special occasion for Lord Shiv devotees across the country. In Ujjain, the city of Mahakal, elaborate preparations have been made for the grand palanquin procession of Lord Mahakaleshwar. During the procession, Lord Mahakal will sit in palanquin in his Chandramoleshwar form. He will travel through the city and give darshan to devotees. A special prayer will be held at the assembly hall at 3:30.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा शो फिल्मी गपशप में। दोस्तों, बॉलीवुड के रंगीन दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई कहानी जन्म लेती है। कहीं किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म का ट्रेलर इंटरनेट पर तहलका मचा देता है, तो कहीं किसी वेब सीरीज का नया सीजन दर्शकों के दिलों पर राज करने लगता है। कभी किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चर्चा में रहता है, तो कभी किसी स्टार का नया लुक वायरल इंटरव्यू या सोशल मीडिया पोस्ट बन जाता है पूरे दिन की बड़ी सुर्खियां। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आज फिल्मी गलियारों में क्या चल रहा है, किस फिल्म ने मचाया धमाल, कौन सा गाना और सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड, तो हम इन सभी का बातें करेंगे आज के इस फिल्मी गपशप में। सबसे पहले आइए देखते हैं आज के ताजा तरीन बॉलीवुड अपडेट्स पर एक नजर। किंग के लिए शाहरुख खान का नया लुक बना चर्चा का विषय। आज सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की लंदन से नई तस्वीरें वायरल हो गई हैं। वे परिवार के साथ नजर आए, लेकिन उन्होंने कैप और हुडी से अपने ब्लीच्ड हेयर को छिपाने की कोशिश की। माना जा रहा है कि ये लुक उनकी आने वाली फिल्म किंग के लिए है, जिसमें उनका बिल्कुल अलग अवतार देखने को मिलेगा। फैंस इसे नए लुक को लेकर काफी उत्साहित है। लगता है किंग खान इस बार बड़े पर्दे पर बिल्कुल नए अंदाज में राज करने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ और रेमो डिसूजा की नई एक्शन फिल्म शुरू। आज आधिकारिक तौर पर एक पुष्टि हुई है कि टाइगर श्रॉफ निदेशक रेमो डिसूजा और निर्माता नीरज तिवारी के साथ एक बड़े एक्शन एंटरटेनर में काम कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इंडस्ट्री इसे हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म बता रही है। किंग की स्टार कास्ट को लेकर उत्साह बरकरार। किंग को लेकर चर्चा लगातार तेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में शाहरुख खान के साथ कई बड़े कलाकार नजर आएंगे और ये साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में गिनी जा रही है। फिल्म की शूटिंग का अगला शेड्यूल भी जल्द शुरू होने वाला है। दोस्तों, हम बात करेंगे और भी बॉलीवुड के ताजा तरीन

0: दोस्तों आप बने हुए हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ताजा तरीन अपडेट्स पर, बातें फ्रेंडशिप डे पर। बॉलीवुड बना सोशल मीडिया का स्टार। फ्रेंडशिप डे के मौके पर इंटरनेट पर एक पुराना लेकिन बेहद लोकप्रिय कंसेप्ट फिर वायरल हो गया। अगर मशहूर टीवी शो फ्रेंड्स का बॉलीवुड वर्जन बने तो कौन सा स्टार कौन सा किरदार निभाएगा? आमिर खान, रणवीर कपूर और ऋतिक रोशन के नामों पर फैंस ने जमकर चर्चा की। सोचिए, अगर रोज बने रणवीर और चैंडलर बने आमिर खान, मजा ही आ जाए। अगले हफ्ते की रिलीज के लिए बॉलीवुड ने बढ़ाई रफ्तार। 3 से 9 अगस्त के बीच सिनेमाघरों और ओटीटी पर कई नई हिंदी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है। प्रोडक्शन हाउस अब जोर शोर से प्रमोशन में जुट गए हैं और सोशल मीडिया पर नए पोस्टर व इंटरव्यू लगातार सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड में नई एक्शन फिल्मों की डिमांड बढ़ी। पिछले कुछ महीनों में एक्शन फिल्मों की सफलता के बाद कई निर्माता इसी जॉनर पर दाव लगा रहे हैं। टाइगर श्रॉफ, रेमो डिसूजा का नया प्रोजेक्ट भी इसी ट्रेंड का हिस्सा माना जा रहा है। अगस्त में प्रमोशनल वार शुरू। फिल्म इंडस्ट्री में अब ट्रेलर लॉन्च, म्यूजिक रिलीज, प्रेस मीट और डिजिटल प्रमोशन का दौर तेजी से बढ़ रहा है। कई बड़े सितारे आने वाले दिनों में अपने नए प्रोजेक्ट्स का प्रचार करते नजर आएंगे। फैंस की नजर अब अगले बड़े ट्रेलर्स पर। आज इंडस्ट्री में चर्चा रही कि अगस्त के पहले और दूसरे सप्ताह में कुछ और बड़ी फिल्मों के टीजर और ट्रेलर रिलीज हो सकते हैं। ट्रेंड सर्किट की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और भी बड़े ऐलान होंगे। तो दोस्तों, आज बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा रही शाहरुख खान के नए किंग के लुक की, टाइगर श्रॉफ और रेमो डिसूजा की नई एक्शन फिल्म की और आने वाले हफ्ते की नए रिलीज की। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन सी फिल्म और कौन सा स्टार सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। बने रहिए फिल्मी गपशप में, क्योंकि यहां मिलती है मनोरंजन की दुनिया की सबसे ताजा, भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प खबरें। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। सुनते हैं उदित नारायण और मधुश्री की आवाजों में।
1: कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।

0: दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद छोटे पर्दे के ताजातरीन अपडेट्स के साथ। फिलहाल बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh
2: and benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। लॉकअप 2 के फिनाले में हुई दो बड़ी बॉलीवुड एंट्री। आज के एपिसोड में हुमा कुरैशी और भूमि पडनेकर ने जनता की आवाज बनकर शो में एंट्री की। दोनों ने कंटेस्टेंट से तीखे सवाल पूछे और उनकी पूरी गेम स्ट्रेटेजी पर खुलकर बात की। इससे फिनाले वीक और भी रोमांचक हो गया है। खतरों के खिलाड़ी 15 को लेकर नई जानकारी। लगभग एक साल के ब्रेक के बाद खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 की वापसी तय हो चुकी है। शो के नए प्रोमो, टाइमिंग और प्रतियोगियों को लेकर दर्शकों में उत्साह लगातार बढ़ रहा है। प्राइम वीडियो का नया रियलिटी शो अलायंस इंडिया चर्चा में। ओटीटी और टीवी दर्शकों के बीच कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किए जा रहे अलायंस इंडिया लगातार चर्चा में है। शो के नए एपिसोड्स को लेकर सोशल मीडिया पर अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और रणनीति आधारित ये फॉर्मेट दर्शकों को पसंद आ रहा है। एमटीवी हसल 5 की तैयारियां तेज। रैप म्यूजिक पसंद करने वालों के लिए अच्छी खबर है। एमटीवी हसल का नया सीजन इस महीने शुरू होने वाला है। ऑडिशन और प्रोमो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है और नए रैपर्स को देखने का इंतजार बढ़ गया है। दोस्तों, फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत। हम लौटेंगे इस गीत के साथ और भी छोटे पर्दे के अपडेट्स पर।

दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। हम बात कर रहे हैं छोटे पर्दे की अपडेट्स पर। टीवी और ओटीटी स्टार्स अब एक ही मंच पर। 2024 में एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कई लोकप्रिय टीवी कलाकार अब ओटीटी रियलिटी शोज और वेब सीरीज में भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीवी और ओटीटी के बीच की दूरी अब तेजी से कम हो रही है। रियलिटी शोज का नया दौर शुरू। इस अगस्त में एक साथ कई बड़े रियलिटी शो चर्चा में हैं। ट्रेटर्स 2, लॉकअप 2, खतरों के खिलाड़ी 15, अलायंस इंडिया और एमटीवी हसल 5। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसे रियलिटी शो सीजन कहा जा रहा है। अगस्त बनेगा टीवी लवर्स के लिए सुपर महीना। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि अगस्त में

लगातार नए शो, नए ट्विस्ट और बड़े पिनाले देखने को मिलेंगे, इसलिए आने वाले कुछ हफ्ते टीवी दर्शकों के लिए बेहद व्यस्त और मनोरंजक रहने वाला है। तो दोस्तों, छोटे पर्दे पर इस समय एक मुकाबला सिर्फ टीआरपी का नहीं बल्कि दर्शकों के दिल जीतने का भी है। एक तरफ नए रियलिटी शो की धूम है तो दूसरी तरफ बड़े सितारे टीवी और ओटीटी दोनों पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के साथ हम फिर लौटेंगे, क्योंकि फिल्मी गपशप में हर कवर होती है सबसे पहले और सबसे दिलचस्प। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं कल होना फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत अलका याग्निक शान की आवाजों में।

दोस्तों आप बने हुए हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 MHz पर। अब बात करते हैं मूवी रिव्यू स्पेशल पर। आज हम बात करेंगे दो फिल्मों की, एक हॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर हीरो रिलीज और दूसरी फिल्म पिछले शुक्रवार रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म के बारे में। सबसे पहले आए देखते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फुल रिव्यू। कहानी को एक नजर डालते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद अब पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। इस फिल्म में पीटर बिल्कुल अकेले हैं, ना कोई एवेंजर्स, ना दोस्त, ना पहचान। अब वो न्यूयॉर्क की गलियों में एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरह छोटे छोटे अपराधों से लड़ते हुए अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। लेकिन तभी एक नया और बेहद खतरनाक दुश्मन सामने आता है जो पीटर के ताकत और उसकी मानसिक मजबूती दोनों की परीक्षा लेता है। फिल्म में एक्शन के साथ साथ अकेलेपन, जिम्मेदारी और उम्मीद की भावनात्मक कहानी भी दिखाई गई है। क्या है सबसे खास? टॉम हॉलैंड का शानदार अभिनय। इस बार टॉम हॉलैंड पहले से ही ज्यादा परफेक्ट स्पाइडरमैन लगे हैं। ये फिल्म उनके अभिनय की वजह से और भी भावनात्मक बन जाती है। वेब्स स्विंगिंग सीक्वेंस शानदार है और हर फाइट अलग स्टाइल में डिजाइन की गई है। एक्शन सीजीआई पर काम कम और स्पाइडरमैन की पूर्ति पर ज्यादा आधारित है। इमोशनल कनेक्ट। अगर आपको नो वे होम पसंद आई थी तो ये फिल्म उसका भावनात्मक विस्तार महसूस होगी। ये सिर्फ सुपर हीरो फिल्म नहीं बल्कि एक इंसान की कहानी है जिसने सब कुछ खो दिया है। बैकग्राउंड म्यूजिक। माइकल गेसिनो का बैकग्राउंड स्कोर कई सीन्स को और प्रभावशाली बना देता है। विजुअल इफेक्ट्स मार्वल की हाल की फिल्मों में तुलना में बीएफएक्स काफी बेहतर और साफ दिखाई देते हैं। यदि कमजोर पक्ष की बात करें तो फिल्म का पहला आधा घंटा थोड़ा धीमा लगता है। कुछ दर्शकों को इसमें पहले जैसे कॉमेडी कम महसूस हो सकती है क्योंकि फिल्म का टोन ज्यादा गंभीर है। तो पब्लिक रिव्यू है, यही असली स्पाइडरमैन है। टॉम हॉलैंड का अब तक का सबसे बेहतरीन अभिनय। एक्शन और इमोशन दोनों बराबर है। मार्वल की हाल के वर्षों की सबसे मजबूत फिल्मों में से एक। दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही और फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग भी दर्ज की है। अगर आप मार्वल फैन हैं तो यह फिल्म बिल्कुल मिस मत कीजिए। और अगर आप सिर्फ अच्छी कहानी देखना चाहते हैं तब भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आपको निराश नहीं करेगी। अब रुक करते हैं लास्ट फ्राइडे को रिलीज हुई आई एम गेम के मूवी रिव्यूज पर। इसे 3.5 out of 5 रेटिंग मिला है। जिस फिल्म हनुमान अंश का पहले जिक्र हुआ था उसकी रिलीज टल गई थी और अब वो 7 अगस्त को रिलीज होगी, इसलिए पिछले शुक्रवार की प्रमुख हिंदी रिलीज आई एम गेम रही। तो कहानी है, ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा और सर्वाइवल थ्रिलर है जिसमें एक युवा खिलाड़ी के संघर्ष, महत्वाकांक्षा और मानसिक दबाव को दिखाया गया है। कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं बल्कि खुद पर भरोसा बनाए रखने की भी है। क्या अच्छा लगा? दमदार सिनेमाटोग्राफी, इमोशनल मोमेंट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लाइमेक्स काफी प्रभावशाली है। यदि कमजोर कड़ी की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले लंबा महसूस होता है। सेकेंड हाफ थोड़ा और कसावट वाला हो सकता है। तो पब्लिक रिएक्शन है, शुरुआती दर्शकों ने फिल्म को वन टाइम वॉच और इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स ड्रामा बताया है। लेकिन जिन दर्शकों को संघर्ष और मोटिवेशन वाली कहानियां पसंद है उन्हें ये फिल्म पसंद आ सकती है। तो दोस्तों आज के मूवी रिव्यू स्पेशल पर बस इतना ही। चलिए फिल्मी गपशप कार्यक्रम के अगले भाग में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत सोनू निगम अलका याग्निक।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्मी गपशप कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जनभागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात में मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में

और दोस्तों, अब बारी है असम से आई एक प्यारी फरमाइश और दोस्ती से भरी डेडिकेशन की। ये मैसेज भेजा है अमाल बसुमतारी ने सोनितपुर असम से। अमाल जी, अरुण एफएम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमाल जी ने अपनी इस खास फरमाइश को डेडिकेट किया है बाइकुन सोना सोनजाली रूबी रमेश अंजलि हितेंद्र देवाशीष रूंडू रूपाली अस्मिता सुनीता जोगेंद्र लवियनो लकी और बिमल को। इनकी पसंद है एक रोमांटिक और मेलोडियस गीत दिल तो खोया है फिल्म आंदोलन से। तो अमल जी, आपकी इस खूबसूरत फरमाइश और इतने सारे अपनों के नाम किए गए इस प्यारे डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, अगला मैसेज हमें आया है टेंशन क्रो, आतुर क्रो और सरलो क्रो की तरफ से, विलेज लांकांगसम कर्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से। टेंशन जी, आतुर जी और सरलो जी, अरुण एफएम पर आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। इनकी पसंद है एक बहुत ही मधुर और रोमांटिक गीत, मेरी साहिबा, फिल्म साहिबा से। और इस खूबसूरत गीत को अपनी सुरीली आवाजों से सजाया है जॉली मुखर्जी और अनुराधा पौडवाल ने। टेंशन क्रो जी, आतुर क्रो जी और सरलो क्रो जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आप सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा और खो जाते हैं प्यार भरी धुनों के सफर में।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड का, आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है रोमेश पात्रो, रुनु पात्रो और लक्की जी की तरफ से, गोलाघाट आसाम से। आप सभी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, इन्होंने अपनी इस खास फरमाइश को डेडिकेट किया है बाइकोन बीमल देवाशीष, हितेंद्र और जोगिंद्र को। इनके पसंद ने एक एनर्जेटिक और खूबसूरत गीत जग लाल लाल फिल्म बिग ब्रदर से इस गीत को गाया है जुबिन गर्ग ने। दोस्तों, जुबिन गर्ग की आवाज का अपने ही एक अलग अंदाज है जो हर गाने में एक खास एनर्जी और एहसास भर देता है। तो रोमेश, रूनू और लक्की जी, आपके इस जोशीली फरमाइश और दोस्ती भरी डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, हम रेडियो ऑन डिमांड के अगले मैसेज के साथ लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। यह मैसेज हमें आया है तिराप डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से चाचा वांगसू जी की तरफ से। चाचा जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका दिल से स्वागत है। आपकी पसंद है देर से हुआ गीत फिल्म हम हो गए आपकी फिल्म से। इस गीत को गाया है कुमार शानू ने। चाचा वांगसू जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों अब बारी है असम से आई एक और एनर्जेटिक फरमाइश की। ये मैसेज भेजा है देवाशीष हजारिका ने माजुली असम से। देवाशीष जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका स्वागत है। इनकी पसंद ने एक फुल ऑन मस्ती और डांस बीट से भरा हुआ गाना नचन फरेत फिल्म ऑल इज वेल से। देवाशीष जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों अब बारी है असम से आई एक और खूबसूरत फरमाइश की। भेजा है जोगिंद्र रोंगपी, सोनाली इंतफी और धर्मकिरी रोंगपी ने सारिहा जान कार्बे अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट असम से। दोस्तों इन्होंने अपनी इस खास फरमाइश को डेडिकेट किया है बाइकोन रमेश रूनू लक्की बिमल और असम और अरुणाचल के सभी श्रोताओं को। इनकी पसंद है एक बहुत ही मधुर और एवरग्रीन गीत पवन जकोरा फिल्म मेरी भाभी से। तो जोगेंद्र सोनाली और धर्मकिरी जी आपकी इस खूबसूरत फरमाइश और सभी श्रोताओं के नाम किए गए इस प्यारे डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, अब अगला मैसेज हमें आया है बिमल बासुमातारी की तरफ से, जुनाई मैसाखी सफोरे धेमाजी असम से। बिमल जी ने इस गीत को डेडिकेट किया है अपने दोस्तों अमाल, रमेश, अंजलि, हितेंद्र, देवाशीष, चंद्रकांतो और अपने सभी दोस्तों को। इनकी पसंद है दिल तो पागल है फिल्म का ये टाइटल ट्रैक को, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। तो बिमल जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें आया है हितेंद्र दास असम से। हितेंद्र जी ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है मुझसे शादी करोगी फिल्म का टाइटल ट्रैक को। हितेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का अगला और अंतिम मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें आया है विश्वनाथ चारालिया असम से, नंदू और उर्मिला।

जी की तरफ से। आप दोनों ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे हमेशा, इस गीत को सुनने का। नंदू उर्मिला जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत को।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता डी नियोग। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण FM 103.1 MHz पर, और आगे के सफर में आपके साथ होंगे RJ पूरा दुनिया जी। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकार बहिस्साक्षी विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। त्रिसैन्य भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4था आयोजन आज नई दिल्ली में हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और संयुक्त युद्ध अभ्यन केंद्र द्वारा समन्वित है। इस पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबुल कस्बे में थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा में। इससे पहले दोस्तों, पहले प्रसारण सभा में आप बने हुए थे RJ कारगर के साथ। उम्मीद करती हूँ RJ कारगर के साथ आपका सफर बहुत ही मनोरंजक रहा होगा। अब इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा। और दोस्तों, इस प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा अजपीते में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक दीतांगजंग तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और दोस्तों, इस प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाऊंगी मैं आपके रेडियो साथी RJ दुनिया।

दोस्तों, आज की दूसरी प्रसन्न सभा की शुरुआत करें उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं दूसरी प्रसन्न सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से लेकर 11:30 तक आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म लहर, 11:30 पर आप सुन पाएंगे वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम, 12:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। बारह बजकर 10 मिनट पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स, 12:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीत माला, 1:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, 2:00 से लेकर 2:30 तक आप बारी बारी से सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार, 2:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिट ऑफ 90s, 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस, 3:00 आप सुन पाएंगे मिशमिका मंच श्रोताओं का कार्यक्रम, 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम, 3:30 पर आप सुन पाएंगे बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम, 1:00 श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 3:40 पर, 3:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, इधमिश में श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे शाम के ठीक 4:00, 4:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और सभा के अंत में 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तो दोस्तों, ये थे अब से लेकर शाम के 4:20 तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की पहले कार्यक्रम के साथ। पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्म लहर, जहां हर गीत एक जज्बा है, हर धुन एक एहसास है और हर बोल किसी कहानी का हिस्सा।

और ऐसे ही एक खूबसूरत गीत के साथ हम फिल्म लहर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। पहला गीत आप सुन पाएंगे मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से देखा तेनो। इस गीत को गाया है मोहम्मद फैज ने।

0: जी दोस्तों, बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म लहर। आइए अब कार्यक्रम का अंतिम लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं। गदर तू फिल्म से दिल झूम, इस गीत को अपनी आवाज दी है अरिजीत सिंह और मिथुन ने।
1: मियां, ये कामयाब होटल है, यहाँ नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। तुम आते जाओ, हम सोचते जाएंगे।

तो दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही हिंद फिल्म लहर कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। तो दोस्तों, अगले 30 मिनट हिंदी फिल्म के गानों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और एंजॉय करते हैं कुछ।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: Knows how to keep the good vibes. So stay tuned tomorrow, same time, same station for great music ahead. This is Coco.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे

0: चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और आप बने हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे गाने जो किसी फिल्म का पार्ट तो नहीं है लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब है। नॉन फिल्म सॉन्ग्स की सबसे खास बात यह होती है कि इन्हें किसी फिल्म की कहानी या स्क्रीन प्ले के हिसाब से नहीं, बल्कि कलाकार के अपने जज्बात और सोच से रचा जाता है, और इस वजह से

इन गानों में एक अलग ही सच्चाई और अपनापन महसूस होती है। और दोस्तों, आज के इस खास सेगमेंट में हम सुनेंगे अरुणाचल प्रदेश के सिंगर सॉन्गराइटर ताबा चाके के सुकून भरी आवाज में कुछ खूबसूरत गाने। और दोस्तों, गानों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं, ताबा चाके सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक बेहतरीन फिंगर स्टाइल गिटारिस्ट और परफॉर्मर भी है। फिलहाल मुंबई में रहते हुए भी उन्होंने अपनी जड़ों और प्रकृति से जुड़े रिश्तों को कभी नहीं छोड़ा। उनके गीत ट्राइबल फोकलोर, नेचर और जिंदगी के खूबसूरत एहसासों से प्रेरित होती है। उनकी गायकी पर वेस्टर्न पॉप, जैज और दुनिया भर के ट्राइबल फोक म्यूजिक का भी असर देखने को मिलती है। हिंदी, निशी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में गाने वाले ताबा चाके की आवाज और सॉन्ग राइटिंग ने उन्हें एक अलग पहचान दी। साल 2016 में उन्होंने पूरे देश में लाइव परफॉर्मेंस देना शुरू किया और उसी साल अपना डेब्यू ईपी बॉन्ड विद नेचर रिलीज किया। इसके बाद वो जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, राघस्तान, जोमालैंड, शाइन लाइट, न्यू वेब एशिया और एनएसटी फेस्ट जैसे कई बारे म्यूजिक फेस्टिवल्स में परफॉर्म कर चुके हैं। और साल 2019 में उनका एल्बम बॉम्बे ड्रीम्स रिलीज हुआ, जिसे म्यूजिक लवर्स ने काफी पसंद किया और जिसने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो आइए ताबा चाके की आवाज में और उन्हीं के एल्बम से कुछ गाने एंजॉय करते हैं। सबसे पहले आप सुन पाएंगे खुद को मिलो एल्बम से शायद।

दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला में। ये कार्यक्रम सिर्फ संगीतों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम के जरिए हम अपना सलाम भेजते हैं उन वीर जवानों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं, हमारे भारतीय सेना के बहादुर फौजी भाइयों और बहनों को। तो चलिए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत गीत के साथ। पहला गीत आप सुन पाएंगे रंग दे बसंती फिल्म से तू बिन बताए। इस गीत को गाया है मधुश्री और नरेश अय्यर ने।

जी हाँ दोस्तों, बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारे फौजी भाई बहनों के लिए सजाया गया ये खास कार्यक्रम गीतमाला। दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ फिल्मों की ही नहीं, वो देश के इतिहास का हिस्सा बन जाती है। शेरशाह भी एक ऐसा फिल्म है जो परमवीर चक्र अवार्डी कैप्टन विक्रम बात्रा की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। कैप्टन विक्रम बात्रा ने 1999 के कारगिल वार में .5140 और .4875 पर अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी दिखाई और देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया। कारगिल वार भारत का पहला ऐसा युद्ध था जिसका कवरेज टेलीविजन पर लगातार देखने को मिला। इसी दौरान देश ने कैप्टन विक्रम बात्रा का वो फेमस इंटरव्यू भी देखा जहाँ उन्होंने अपने आइकॉनिक स्लोगन ये दिल मांगे मोर कहा। ये लफ्ज सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि उनकी हिम्मत और जज्बे की पहचान बन गई। फिल्म सिर्फ एक सोल्जर की ब्रेवरी ही नहीं बल्कि एक खूबसूरत लव स्टोरी

दिखाती है। कैप्टन विक्रम बत्रा के फियोंसे डिंपल चीमा ने उनकी शहादत के बाद कभी शादी नहीं की। उनका प्यार और उनकी यादों के साथ जीने का फैसला भी आज लोगों को इमोशनल कर देती है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया और कियारा आडवाणी ने डिंपल चीमा का किरदार बहुत ही खूबसूरती से निभाया। और आज भी जब हम इस फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा को ये कहते हुए सुनते हैं कि या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगा में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर, तो हिंदुस्तान का सीना फक्र से छोरा हो जाता है। तो चलिए इस देशभक्ति और प्यार के एहसास के साथ सुनते हैं शेरशाह का ये दिल को छू लेने वाला गीत राता लंबिया। इस गीत को अपनी खूबसूरत आवाज दी है जुबिन नौटियाल ने।

ऑपरेशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टनागर का अरुण एफ एम 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और आज के गीत माला कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन पाएंगे छक दे इंडिया फिल्म का टाइटल ट्रैक। इस गीत को गाया है सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मरियाना डिक्रूज ने।

दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज के गीतमाला कार्यक्रम के सारे गाने ने आप सबके दिल में देशभक्ति के उन एहसासों को एक बार फिर जगाया होगा। हमारे वीर जवानों को सलाम, जिनकी वजह से हम अपनी जिंदगी सुकून और आराम के साथ जी पाते हैं। इसी दुआ के साथ कि हमारे देश के हर सिपाही हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहें, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ गीतमाला कार्यक्रम से। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय एक और नए गीतमाला कार्यक्रम के साथ। और दोस्तों, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आप बने रहे हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

0: पक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. amid opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. The bill seeks to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognized center in statistical sciences and allied fields. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. The opposition members came to the well demanding Union Home Minister Amit Shah's reply over the alleged police action during students' protest over the NEET issue. The presiding officer urged the members to go back to their seats as the pandemonium continued. The Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house assembled at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan congratulated Team India for its outstanding performance at the Commonwealth Games held at Glasgow.
3: India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons.
2: Union Minister Sanjay Seth and an MP from Jharkhand has alleged serious irregularities in the recruitment process for the Jharkhand Public Service Commission examination, claiming that deserving candidates were denied selection while candidates with significantly lower marks were selected. Talking to Akashwani News, he criticized the Jharkhand government and said no state government representative had met the protesting students despite the ongoing situation. The counting of votes for the by-elections in three assembly constituencies is underway. In Bihar's Bankipur assembly constituency, Jan Swaraj Party candidate Prashant Kishore is leading by 21,941 votes. In Gujarat's Manjalpur assembly constituency, BJP candidate Satyendra Bhai Patel is leading by 37,542 votes. In Madhya Pradesh's Datia assembly constituency, Congress Party candidate Ghanshyam Singh is leading by 1,786 votes. Polling for the three assembly constituencies was held on the 30th of last month. A Delhi court today acquitted former Wrestling Federation of India chief Brijbhushan Sharan Singh and co-accused Vinod Tomar in a sexual harassment case filed by women wrestlers. Additional Chief Judicial Magistrate Ashwini Pawar acquitted ex-BJP MP Brijbhushan and Vinod Tomar and former Wrestling Federation of India Assistant Secretary in the case. The court had reserved the order for today after completion of the final arguments in the case lodged by six women wrestlers. In Odisha, the flood situation is steadily improving with water receding in all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. The Hirakud Dam authorities have reduced flood water discharge after a decline in reservoir inflow. Pakistani Armed Forces' brutal attack on peaceful protesters continues in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Violent clashes were reported between protesters and security forces, with the Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir alleging a significant rise in casualties. According to the human rights group, over 80 people were killed in the firing on protesters by security forces. Negotiations between the United States and Iran are scheduled to take place today through intermediaries. Speaking to reporters on board Air Force One, U.S. President Donald Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. President Trump further indicated that an agreement could be reached regarding the management of the Strait of Hormuz. And with that, we end this news bulletin.
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से. आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात. और दोस्तों अब आप सुन पाएंगे आप सबका बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश.
5: हेलो फरमाइश. हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 बजे होती है. फोन नंबर है 03602292239 यानी 03602292239.
6: हेलो फरमाइश.
5: हेलो फरमाइश.
7: हेलो फरमाइश
5: जी. नमस्कार.
7: नमस्ते सर.
5: नमस्ते नमस्ते. हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
7: धन्यवाद
5: जी.
7: मैं रमेश पत्र गुलाक समर्पण कोयसु হয় রমেশ দা কল করার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আর কেন আছে আপনি
8: মই ভালে আছো আপনার কেন ভাল নয়
7: হয় ময়ো বহুত ভাল
8: হয়
7: আর আপনার তাত বতর কেন আছে এতিয়া
8: বতর বর্তমান বরষুণ হওয়া নাই যদিও আহিব পারে বতর তো ডাওরিয়া হয়ে আছে
7: আচ্ছা আচ্ছা ওকে বানপানি তো হওয়া নাই এবার
8: পানি হয়ে গেল বানপানি হয়ে গেল ইয়াত
7: আচ্ছা আচ্ছা এটা হুকিছে ন
8: তাহলে এটা আমার ইয়াত নর্মাল লাইফ চলি আছে
7: আচ্ছা আচ্ছা ওকে হুনি ভাল লাগিছে আর
8: হয় আর অন্য শিবসাগর সাইডে এতিয়াও বাকি আছে সম্পূর্ণ হেৰি হোৱা নাই
7: আশা কৰো আৰু সোনকালে ভাল হৈ যাব কাৰণে
8: হয় হয় হয় আমিও

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: दिनेश
0: शर्मा कैन आसे अपनी
1: भाल
0: हाँ मैं खूब भाल। इतना कॉल कर बाहर मैं घर
1: बर्तमान
0: मैं ड्यूटी
1: पा नाइट ड्यूटी घर पालो।
0: अच्छा अच्छा, नाइट ड्यूटी आसो न
1: ओके रात 10
0: अच्छा अच्छा ओके। और घर सब भाल
1: भाल भाल आम ऊर बानपानी कमी
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके। अपना तो क्या प्रॉब्लम हुआ नहीं?
1: मोर खेती पथार अलग नष्ट
0: হৈছে। अच्छा अच्छा, अकमान नष्ट হৈছে न ओके ओके ओके। तो ठीक है, आज कि गाना শুনিব দিনেশ দা?
1: मैं हाथी मेरा साथी चल चल मेरे हाथी गान
0: जाए। अच्छा ये শুনিব न ओके। काका শুনাব?
1: मैं भाई पन्मुंडा हरदोरा नीलपल दोरा मंटु बरुआ दादा अपना
0: ओके मुको दे दिबो
1: करो केंद्र सकलो कमकता लय
0: ओके
1: नितान जगह दीपाल जगह तापा पनुजी दत्त
0: ओके सबक आपने हुनाब खुजे ओके। तो कॉल करा कने बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश दा, हुनु आपनर पसंदीदा गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए कैसे हो आप, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बारिश ज्यादा होगी, क्योंकि पूर्वानुमान 2-3 दिन से थोड़ी हल्की बारिश हो रही थी, और आज जो मोबाइल के अंदर जो बताते हैं कि आज पानी ज्यादा गिरता है, मतलब वो जो मोबाइल में बताते हैं ना सर, गूगल
0: जी
1: से
0: जी जी हाँ जी हाँ जी
1: पहले
0: हाँ जी
1: से बता देते हैं उसमें,
0: जी जी
1: तो
0: ओके।
1: ज्यादा बारिश होने का दिख रहा है। पर
0: अच्छा।
1: ठीक है, हम तो चाहते हैं कि अच्छी बारिश हो, काफी दिनों से अच्छी बारिश के मजे नहीं लिए हैं, क्योंकि जब बारिश अच्छी होगी तो भजिए बनाएंगे तो फिर आनंद आएगा खाने का।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी
1: जी सर
0: तो
1: जी,
0: भजिए की तैयारी कीजिए, हम भी ज्वाइन करेंगे आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आइएगा कभी आप उज्जैन
0: जी
1: दर्शन करने, तो आपको बिल्कुल दाल बाटी भी खिलाएंगे और भजिए भी खिलाएंगे।
0: जी जी जी जरूर कोशिश करेंगे आने की।
1: जी बिल्कुल सर जी, और आपके यहाँ मौसम तो अच्छा होगा बिल्कुल।
0: जी हमारे यहाँ तो रात भर बारिश हुई थी, अभी भी
1: जी
0: हल्की फुल्की बारिश हो रही है।
1: जी जी जी
0: जी
1: जी सर जी,
0: तो आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: गाना सर ये आज 31 जुलाई है, और 31 जुलाई को महान जो गायक हैं मोहम्मद रफी साहब की जन्म जयंती, वो श्रद्धांजलि है आज, तो मोहम्मद रफी साहब के जो श्रद्धांजलि स्वरूप मेरा एक सॉन्ग है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का,
0: ओके
1: उनका एक गीत है।

0: मेरे संग संग तुम भी गाओगे, ऐसा गीत है सर।
1: जी, मोहम्मद रफ़ी साहब को तो कोई भूल ही नहीं सकता. उनकी जो आवाज़ में कशिश है, मिठास है, वो तो हमेशा हमारे ज़िंदगी में भरा हुआ रहेगा.
0: बिल्कुल, और जितने भी गाने गाए हैं
1: जी
0: उन्होंने अमर गीत है, और यह गीत भी उनका अमर
1: अमर
0: गीत
1: गीत ही है.
0: है।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल
0: जी बिल्कुल सर, ये
1: जी
0: तो उन्हीं को यह गाना समर्पित रहेगा मेरा आज का सॉन्ग।
1: जी और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
0: हमारे मित्र हैं शारदा प्रसाद जी हैं, और हमारे एक मित्र हैं सुनील झा जी हैं भोपाल से, और गौतम राय बोले जी हैं, धीरज रबारी जी हैं, और अनुकुमार भट्टाचार्य जी हैं, सत्युपा भट्टाचार्य जी हैं, अर्जुन प्रधान जी हैं, और बाइकन मुंडा जी हैं, और हमारे और भी आसाम के कुछ मित्र हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनके,
1: जी
0: उन सबके लिए भी रहेगा, और आकाशवाणी के लिए भी ये गीत रहेगा कि तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे।
1: जी जी जी तो लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सुनते हैं आपके
0: जी
1: पसंद का गाना.
0: जी धन्यवाद, बहुत बहुत।

0: अचानक से एकदम याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो आज हम भी याद कर लेते हैं आपको।
1: अच्छा अच्छा जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए कैसे हो आप?
0: मैं ठीक हूँ, और आपके क्या हाल चाल?
1: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
0: मौसम ठीक है, हल्की हल्की बारिश हो रही है।
1: अच्छा,
0: अभी बारिश तो चाहिए मतलब ऐसा तो।
1: जी जी जी जी हाँ जी, हमारे यहाँ तो लगातार बारिश ही हो रही है अरुणाचल प्रदेश
0: में। हो रही है?
1: जी जी जी, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में।
0: जी,
1: जी।
0: मुझे गाना सुनना है।
1: हाँ जी कहिए, कौन सा गाना?
0: मूवी का नाम है जरा हटके जरा बचके, इसी में एक सॉन्ग है तेरे बांस से फलक से मैं चांद लाऊंगा।
1: ओके
0: जरूर। और डेडिकेट आपको रहेगा, और जो कॉलर सुन रहे हैं, मैंने बहुत दिन में कॉल किया तो मुझे पता नहीं कौन कौन से कॉलर कॉल करते हैं।
1: अच्छा जी,
0: हमारे मध्य प्रदेश के तो होंगे कुछ ना कुछ।
1: जी
0: तो
1: जी जी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जी जी
0: तो उन सब के लिए डेडिकेट रहेगा। और
1: नहीं नहीं
0: वो एक
1: नहीं
0: मैम काम करती थी, उनका वो
1: हाँ जी
0: आती थी
1: नूरी, हाँ हाँ आती आती बीच बीच में आती है।
0: उनको बोल दीजिएगा मैं उनको याद कर रही थी।
1: ओके ओके, रानू जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर, बाय।
1: ओके बाबा।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद, मैं श्रीपाल गोयल हरियाणा बहादुरगढ़ से बात कर रहा हूँ।
0: जी श्रीपाल गोयल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: सर ठीक है, बस वहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ तो काफी गर्मी हो गई है, धूप निकली।
0: अच्छा, हमारे यहाँ तो रात भर बारिश हुई थी, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है हल्की फुल्की।
1: जी,
0: तो आशा करते हैं आपके वहाँ पे भी जल्दी बारिश हो, ताकि आप सभी को राहत मिले गर्मी से। अभी तक बारिश हुई नहीं क्या?
1: धूप निकल गई है।
0: अच्छा,
1: दो दिन पहले हुई थी, अभी धूप निकल गई, तो उससे मतलब उमस बढ़ गई है।
0: ओके, जी जी जी जी, हाँ जी, तो धूप से थोड़ा बचे रहिए। जी जी, हाँ जी। तो श्रीपाल जी, कहिए आज कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: सर फिल्म आई थी मेहंदी लगी मेरे हाथ।
0: ओके, हाँ जी,
1: गाना है आपने जो ही दिन लगी थी, मुकेश जी के आवाज में।
0: अच्छा जी जी जी, और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे? हाँ जी
1: सर, अभी मैं दोस्त ने नंबर दिया है।
0: अच्छा,
1: ट्राई करो तो कॉल भी लग गया, तुरंत कॉल लगे, नंबर दिया मोहन जी ने नंबर दिया था।
0: अच्छा,
1: योगेश जी है, भगवान सिंह जी भी, और काफी श्रोता है।
0: ओके ओके, जी जी,
1: औजा जी है, सभी सुन रहे हैं आपको अभी।
0: अच्छा, सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो श्रीपाल गोयल जी कॉल करने

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्ते
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, थैंक यू।
0: हाँ जी
1: सर, 2 सप्ताह फोन मिला है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, 2 सप्ताह आपने कॉल नहीं किया था ना।
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी जी
1: मैंने फोन लगाया था, लेकिन रिंग काटा है लेकिन रिसीव नहीं हुआ था।
0: ओहो, ओके ओके, शायद कॉल पूरा हो गया था इसलिए रिसीव नहीं किया।
1: जी।
0: जी हाँ जी,
1: और
0: तो
1: मेरा आकाशवाणी ईटानगर तो दिल का धड़कन है।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अपना परिचय हो जाए।
1: जी सर, मैं हरदोरा बोल रहा हूँ, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोपुरासन से।
0: जी हरदोरा जी, आप भी हमारे दिल के धड़कन हैं, इसी तरह से कॉल करते रहिए।
1: जी सर,
0: जी तो आज कौन सा फिल्म का गाना सुनेंगे आप हरदोरा जी?
1: आज तो फिल्म है, एक
0: फिल्म
1: फिल्म का नाम है एक रिश्ता।
0: एक रिश्ता। ओके
1: जी, और गाने का बोल है एक दिल है, और इस गीत में आवाज दिया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।
0: ओके जी, और किन
1: और
0: लोगों को
1: मेरा
0: डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: हाँ, ये गीत सबसे पहले तो आपको सुनाऊंगी। जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: जी और नीलोत्पल द्वारा, मंटू बड़ुआ, दिनेश शर्मा, सुम्बी दत्त, भाईकन मुंडा, रमेश पात्र, विमल बसुमतारी, अमल बसुमतारी, पारा एक छोटा है बसंती काम्बो, उसको भी ये गीत सुनाना चाहती हूँ।
0: ओके तो हरिद्वारा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: जी जी सर।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, प्यार भरा नमस्कार सर जी।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से।
1: मैं जवरडी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोले बात करो सर जी।
0: जी गौतम राय बोले जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए कैसे हैं आप?
1: बहुत मजे में सर जी, आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही मजे में हूँ, बढ़िया हूँ।
1: मैंने आपसे वादा किया था एक महीने के बाद मैं फोन लगाऊंगा, कम से कम डेढ़ महीना हो गया सर जी मैंने फोन नहीं लगाया।
0: अच्छा जी जी जी जी, आप लोग समझदार हैं, सभी श्रोताओं को आप चांस देना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगर हमने अंतराल रखा तो नए साथियों को मौका मिलता ना।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी,
1: और ईटानगर के कार्यक्रम तो बहुत सुस्पष्ट आवाज में सुनाई देते हैं अमरावती महाराष्ट्र में।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से प्यार देते रहेगा आकाशवाणी ईटानगर को।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, अभी तो बारिश का मौसम बहुत जोर जोर से चालू है सर जी हमारे यहाँ।
0: जी
1: बरसात हुई है 3 दिन से।
0: अच्छा अच्छा,
1: सब फसल भी अच्छी है हमारे यहाँ, कपास की खेती तो होती है सर जी हमारे यहाँ।
0: अच्छा जी जी जी,
1: कपास होती है, सोयाबीन होता है, तुअर होती है, और खास करके आकाशवाणी ईटानगर से जो किसानों के लिए जानकारी मिलती है ना, तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है।
0: अच्छा जी जी जी जी,
1: उनके हिसाब से हम खाद लगाते हैं, खाद फसल को डालते हैं।
0: अच्छा जी जी,
1: दवाई भी अच्छी लगती है, बहुत हमें बहुत किसानों पर आधारित कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी जी, सही बात है, किसान भाई अगर खुश तो हम भी खुश।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, वही विशेष वैज्ञानिक जो हमारे साथ बातचीत करते तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी जी जी,
1: उसके मार्गदर्शन से हम फसल की खेती करते हैं सर जी।
0: ओके चलिए,
1: हमारा खास हेलो फार्मर्स एकता ग्रुप है, तो ये आकाशवाणी के ईटानगर के कार्यक्रम की जानकारी पूरे हम हमारे ग्रुप में डालते हैं सर जी।
0: अच्छा जी,
1: और जो साथी ईटानगर पर फोन लगाया और उसका फोन शामिल हुआ, अगर उसको सुनने में नहीं आया तो उनकी रिकॉर्डिंग हमारे ग्रुप पे डालते हैं ताकि वो सुन सके।
0: क्या बात है क्या बात है, इसी तरह से दोस्ती भाईचारा बनाए रखिए अपने ग्रुप में।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। सर जी, पूरे भारत के कोने कोने के कम से कम 120 से ज्यादा श्रोता हमारे ग्रुप में है।
0: ओके जी जी,
1: और ये जो मेरा फोन लगाया, अगर मैंने हमारे ग्रुप में लिखा ऐसा कि मेरा फोन लग गया तो सब लोग फोन लगाने लगाएंगे।
0: अच्छा
1: जी जी, नंबर भी डालते हैं सर जी।
0: ओके,
1: उसका प्रसारण कब है, खास करके हमारे मित्र लोकेंद्र वर्मा जी भी बहुत बातचीत करते हैं।
0: जी जी जी, हाँ जी हाँ जी,
1: तो
0: काफी सारी जानकारी देते हैं लोकेंद्र जी हमें भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, तो आज तो बारिश के मौसम से फिल्म क्रांति का गाना सुनवाना चाहते हो सर जी?
0: जी जी जरूर,
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
0: ओके हाँ जी, और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
1: और ये गीत सबसे पहले मैं आपके लिए डिलीट करता हूँ।
0: धन्यवाद जी,
1: और मेरे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के सभी श्रोता के लिए मेरा गाना डिलीट कर सर जी।
0: ओके,
1: आप भी सुनिए और हमें भी सुनाए सर जी।
0: जी जी जी, हम भी सुनेंगे आपके साथ जरूर। तो गौतम जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: धन्यवाद सर जी।
0: ओके धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 बजे होती है। फोन नंबर है 03602292239 यानी 03602292239।
1: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके तुरंत बाद यानी ठीक 2 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और आप सुन पाएंगे मिड न्यूज एवं दोपहर समाचार।

0: all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. The Hirakud Dam authorities have reduced floodwater discharge after a decline in reservoir inflow. Our correspondent reports that the state government has announced financial assistance for damaged houses and crop losses as restoration gathers pace.
1: The flood situation in Odisha continues to improve as water has receded in all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. With inflow into the Hirakud Reserve declining, authorities have closed 3 spillway gates, reducing flood water discharge to 19 gates from 22 earlier. The state government has begun a detailed assessment of flood damage and announced financial assistance of up to 1,20,000 rupees for families whose houses were completely destroyed. Compensation has also been announced for partially damaged houses and crop loss. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: News just in, the Lok Sabha has been adjourned till 11 a.m. tomorrow. The Indian Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. Heavy rainfall is also expected tomorrow over Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have congratulated the Indian contingent on its impressive performance at the Glasgow Commonwealth Games by bringing 39 medals. President Murmu expressed confidence that the sportspersons of the country will bring greater glory to the nation in the future international events. We have news just in, the Lok Sabha has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in 3 assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित बिहार गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित और अरुणाचल प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका अब समाचार विस्तार से विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट
3: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेंटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
1: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपकी

0: शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजिज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय

0: नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित बारी बारी से मित्र न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का और FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।
3: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
4: गीत संगीत,
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात,
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आपकी रेडियो साथ ही आरजे दुनिया के साथ। और दोस्तों अब वक्त है कार्यक्रम हिट ऑफ 90s का। दोस्तों 90s के दौरान बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में फैमिली, प्यार, ट्रेडिशन और कल्चर में बना करते थे। स्टोरी लाइन्स बहुत ही चैलेंजिंग होती थी और तब का वो समय था जब फीमेल ओरिएंटेड रोल्स की एंट्री हुई। तो आज का ये खास सेगमेंट होगा उन खूबसूरत हीरोइंस के नाम जिन्होंने अपनी वर्सिटिलिटी और ग्रेस के साथ स्टीरियोटाइप्स तोड़े और बॉलीवुड हिस्ट्री में अपना नाम लिखा। और दोस्तों ग्रेस की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई दिमाग में आता है तो वो है बॉलीवुड की धक धक क्वीन माधुरी दीक्षित। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन को शुरुआत में फिल्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था? जी हाँ दोस्तों, वो तो माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री लेना चाहती थी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। और 1984 का वो समय था जब अबोट फिल्म के साथ उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। ये फिल्म तो चली नहीं मगर माधुरी दीक्षित को क्रिटिक से बहुत तारीफ मिली। और फिर क्या था, उनकी तकदीर की गाड़ी जैसे निकल पड़ी।

जी दोस्तों, आज ही तो अब 90s में हम बात कर रहे हैं उन हीरोइंस की जिनके बिना इंडियन फिल्म हिस्ट्री लिखी ही नहीं जा सकती। और अब बात करते हैं दिव्या भारती की। उनका करियर भले ही सिर्फ कुछ सालों का रहा, लेकिन उस छोटे से सफर में उन्होंने जो कामयाबी हासिल की वो आज भी मिसाल मानी जाती है। विश्वथम्मा, शोला और सबनम, दिल का क्या कसूर और दीवाना जैसे फिल्मों ने उन्हें 90s की सबसे प्रोमिसिंग एक्ट्रेसेस में ला खड़ा कर दिया। उनकी मासूमियत, एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस और नेचुरल एक्टिंग ने बहुत कम समय में उन्हें ऑडियंस का दिल जीतने वाला स्टार बना दिया। उनका अचानक चले जाना बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी कष्ट थी, लेकिन उनके गाने और फिल्में आज भी उनकी यादों को जिंदा रखती है। तो चलिए उनके बहुत ही यादगार और खूबसूरत गाना सुनते हैं। फिल्म विश्वथामा से सात समुन्दर पार, इस गीत को गाया है साधना सरगम ने।

अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। दोस्तों 90s की दीवार की बात हो और करिश्मा कपूर का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। कपूर परिवार की इस बेटी ने 90s के बीच और आखिरी सालों में बॉलीवुड पर अपनी अलग ही छाप छोड़ी। शुरुआत में ग्लैमरस रोल से पहचान बनाने के बाद करिश्मा ने अपनी वर्सेटिलिटी साबित की। राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, हीरो नंबर वन, राजा बाबू, बीवी नंबर वन और हम साथ साथ है जैसे सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। गोविंदा के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग और डांस केमिस्ट्री आज भी बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ी में गिना जाता है। राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला और साथ ही दिल तो पागल है के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का सम्मान भी मिला है। तो चलिए उन्हीं के गाना सुना रही हूँ, मेरे जीवन साथी फिल्म से दीवानी में दीवानी, अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम की आवाजों में।

दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का और FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। दोस्तों आज के हिट ऑफ 90s कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे बॉलीवुड दिवास की जिन्होंने अपनी मेहनत, टैलेंट और यादगार फिल्मों से उस दौर को हमेशा के लिए अमर बना दिया। और अब बात करते हैं मनीषा कोइराला की। अपने एक्सप्रेसिव आंखों और गहरी एक्टिंग के लिए मशहूर मनीषा ने 90s में परफॉर्मेंसेस ओरिएंटेड सिनेमा को एक अलग पहचान दी। सौदागर से शुरुआत करने के बाद उन्होंने 1942, ए लव स्टोरी, बॉम्बे, खामोशी द म्यूजिकल, अकेले हम अकेले तुम, गुप्त, दिल से और मन जैसे फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंसेस दी। रोमांटिक हीरोइन से लेकर इमोशनली इंटेंस किरदारों तक हर रोल में उन्होंने अपनी एक्टिंग का एक नया रंग दिखाया। उनकी फिल्मों को सिर्फ कमर्शियल ही नहीं बल्कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी मिली और इसी वजह से वो 90s की सबसे रेस्पेक्टेड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है। तो चलिए आप सुनते हैं फर्स्ट लव लेटर फिल्म से जब से मिले ने ना इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

इसी के साथ ही दोस्तों आज का हितम 90 कार्यक्रम भी समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कुछ यादगार गानों और कुछ यादगार बातों के साथ हमने आपका भरपूर मनोरंजन किए होंगे। और दोस्तों आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। 3 बजे आप सुन पाएंगे मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताय खामते श्रोताओं का कार्यक्रम। हम लौटेंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: Angrap chong sa to angram sokai ta jangyan chigi mal sa kuman kin lai ko song ansam lang phaim nai phro che budget sam sam lang phai phro nai gat chong san wang ti kan mlau kunong ka heda prana shini
1: nai akaswani itanagar dibrugarh medium wave si pa si sip si chum si meter हो पाचे चिप आ किलो हर्स मई मुछलांग खम ताई खम ती हो को माहो मने वन तरंगना लंगनी पीते सोंहिंग पा साउ तो न इंग्राजी पी मु सोंहिंग साउ हो नुन अगस्त ने सामबन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फोंग पिन मा ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम मई औसी मु नई कुनफुंग इंडियन हाउ तू लिन लाई अन मई Naima TC place mai ausi khau chau mai tang ta wani woi akiu kan ha ka phong tu lin ne mai mung india hau mu nai 39 an medals nei nei kan ka na 39 an mai 13 an ne ka cham gold medal nam ho governor lieutenant general kt parnai mu nai hichi january tali khansam हाचू लंबो मई हंगचा निनी ननाम सि खन नय हिचि नय ने कचम कुन चित हिंग पा चित चिप चित मीटर्स नियाती जंस्कर लडक मई औसी सोंखा सों चाउ मई पिचुम हुम य कन हका नम हो स्टेट लेवल खौ इवेन हंगचा सिप कुकते एडिक्शन फ्री प्लेज mega campaign na nasa mukh bharat nasa mukh arunachal mai ausi wan manga nyati brahma kumaris raj yoga center jolang itanagar mai ko tangkan ka mue nai event nai mai minister kanlonglem home interstate border affair phe khansam water supply hikchi mama natung रोयकोप तंग डायरेक्टर जनरल खोंग लुक्सु हिक्चु शिव दर्शन सिंह पिंचिप गेसी इवेंट नमे कखौ नंगकन माका इवेंट नै कचम लोकन प्रा ब्रह्म कुमारिस राज योगा मेडिटेशन एंड डी एडिक्शन सेंटर रोयकोप तंग नेशनल मिनिस्ट्रीज खौ हेड ऑर्गेनाइज कनका खनसम एम्स इवेंट नै कचम hangsa inspire kun singkun mung tang lai ho say no to addiction khansam embrace a healthy lifestyle nam ho hangsa drugs free india khansam viksit bharat pimu song hing sisip chit mera yuva bharat itanagar nai now ministry khong youth affair and sport khansam na chawong mung india ho mai ausi nasa muk yuwa hangcha viksit bharat sanskalp abhiyan nai niyati nirish niljuri wan manga mai nini nanam si head organize kan ka border road organization bro ho mu nai khuntang yota anka ti man huri na jela kurung kume mai खो सोंग पा फुट नै निनि ननाम सि काइम कन हगा खो कना नै कचम मु फोंटु नम लोंग स्पीड 15 खम नन जुलाई पि मु सोंग हिन सहु मै फि कन का मु नै आईएमडी खौ लो खैमा हांगता जिला पपंपरे खौ रेड कलर वार्निंग नै tak yang mayo khansam hangcha jela is coming kurungkume leparada is yang lohit khansam jela longding nai khau mai orange alert warning nai tak yang mayo khansam jela nai khau mai fate fanang funtu tak to heng lung mayo ne si imd khau lo khai ma nam ho khansam cha hangmane kaukham tu khainai nam ho ไม่ในมืออุ้ยคำไม่ลูกเจ้ากันตนามันนื้อไหมฮันในทอมติคา

दोस्त, अभी आप सुन रहे थे ताई खामते श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप बने हुए हैं मेरे साथ, यानी आपके रेडियो साथी RJ दुनिया के साथ। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का।

दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी कुछ गर्मा गर्म और ट्रेंडिंग खबरों पर। तो शाहरुख खान हाल ही में लंदन में अपनी फैमिली के साथ नजर आए। इस दौरान फैंस की नजर उनके नए ब्लीच्ड हेयर लुक पर पड़ी, जिसे वो कैप से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नया लुक उनकी मच अवेटेड एक्शन फिल्म किंग के लिए है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना भी नजर आएंगी और अभिषेक बच्चन विलेन के रोल में दिखने वाले हैं। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से फैंस के बीच इस फिल्म का क्रेज और भी बढ़ चुका है। एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ ने अपनी अगली फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में वो पहली बार डायरेक्टर कोरियोग्राफर रमो डिसूजा के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म को नीरज तिवारी प्रोड्यूस कर रहे हैं और शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। टाइगर के फैंस को उम्मीद है कि इस फिल्म में भी उन्हें एक बार फिर जबरदस्त एक्शन, स्टाइलिश तंस और हाई एनर्जी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सनी देओल अपनी अपकमिंग हिस्टोरिकल ड्रामा बतवारा 1947 को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म भारत के पार्टीशन के दौरान की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाएगी। रिलीज से पहले सनी देओल और करण देओल पटना सहित पहुँच कर अरदास करते नजर आए। देशभक्ति और इतिहास पर आधारित इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं और इंडिपेंडेंस डे के आसपास रिलीज होने की वजह से इसका बज और भी बढ़ चुका है। और सारे दोस्तों, फ्रेंडशिप डे के मौके पर फिल्म खोसला का घोसला की कास्ट ने एक वायरल इंस्टाग्राम ट्रेंड ज्वाइन किया। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और फिल्म के कई कलाकारों ने नॉस्टैल्जिया वीडियो शेयर किया, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया। पुरानी यादें ताजा हो गई और सोशल मीडिया पर इस रियूनियन की खूब चर्चा हो रही है। अगस्त में थिएटर्स और ओटीटी दुनिया पर एंटरटेनमेंट की भरमार देखने को मिलने वाली है। बतवारा 1947 के अलावा हिंदी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज के लिए तैयार है। वहीं शाहरुख खान की किंग, रणवीर कपूर की रामायण और सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी लगातार हेडलाइंस में बने हुए हैं। आने वाले कुछ महीने बॉलीवुड लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाली है।

याद नहीं करता, यह फिल्म अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनिंग्स में से एक बन चुकी है। और साथ ही दोस्तों, दूसरी तरफ क्रिस्टोफर नोलान की मच अवेटेड फिल्म दाउदी से ग्रीक एपिक पर बेस्ड इस ग्रैंड एडवेंचर में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया, एन हैथवे और रॉबर्ट पैटिसन जैसे बड़े स्टार्स नजर आ रहे हैं। अपने ब्रेड ब्रेकिंग विजुअल्स और नोलान के सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग स्टाइल की वजह से यह फिल्म भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है और सिनेमा लवर्स इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

तो दोस्तों बोलिए अपडेट में आज बस इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म का टाइटल ट्रैक। इस गीत को गाया है पलक मुचाल ने।

दोस्तों इसी के साथ ही बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे वंचो श्रोताओं का समाचार।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का, तो चलिए आनंद लेते हैं कुछ बेहतरीन हिंदी गानों का। और पहला गीत सुनते हैं कसूर फिल्म से, जिंदगी बन गए हो तुम। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: जैसा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का और FM 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। दोस्तों, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 4 बजे आप सुन पाएंगे ईद उमिश में श्रोताओं का समाचार। हम होतेंगे 4:05 पर ऐसे ही कुछ खूबसूरत गानों के साथ। वांछो श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ईद उमिश में कार्यक्रम।
1: एचा आकाशवाणी ईटानगर पुयालापुची एसो आसुलिनी एतानीची ईद उमिश में आहोला कीजिए दागालंबो। इंडिया मचे स्पोर्ट्स टाइम में स्कॉटलैंड मचे ग्लासगो आतिकोने कॉमनवेल्थ गेम्स टाइम मगा अखगा मने होलसो गोल्ड मेडल लापगे आसु खिनी मेडल अनेगे ने कापी पोजीशन मा खिगा बचा है प्रांडोपिदा ने। इंडिया मचे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू में लगा महो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में भी अली लगादा अहोगा। इंडिया में अहा है अचे एचा एमगा मने आसु मेडल अनेगा बचे एचा बुगे असु खिनी मेडल अनेगा ने एगो खोआ बबुदा ने यूनियन स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया में लाओगादा आओगा। अरुणाचल प्रदेश मचे याकू कानी जनवरी ताली ने हचुलोंबो में लद्दाख जांसकार आतिकाचे एजारिन बेउदो ने इहु यू मीटर यू माउंट कुन एंडिपु शुतिगा बचा है एगो खोआ बबुदा ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केती पारनायक में बुनी लगाने। अरुणाचल प्रदेश मचे याकू कानी में एचाहन एहेंदो इंडिया मचे सुही मियांदो गे माउंट कुन एंडिपु शुतिगा ने एशु ताजुमा एने अचे आमु अखगा बबुदा लगादा आओगा। अने शुगे ने अचकानी में आउ ताले दोने जो तंगो प्रदा एकेगा बदा ने गवर्नर में लगाने। अचकानी में अली एकेगा मने अरुणाचल प्रदेश माचे याको नंबर ला प्रगे आयु ओ नंबर में आही तो भाई बहुत मोबिदा ला ओगादा आओगा। अतिकाची आयु ओ नंबर में आयु मुगा दू हाता इजिन ना ने अरुणाचल प्रदेश होम मिनिस्टर ममन नाथुंग में ईटानगर जुलांग आतिकोचे ब्रह्मा कुमारीस राजयोग सेंटर मने आयमुगा दू हानू दोने टोमुए थोपुची पो लासे आथगा दू मा चिचाब महो लाइबादा आओगा। ब्रह्मा कुमारीस राजयोग मेडिटेशन दोने दे एडिक्शन सेंटर में यूनियन मिनिस्ट्री अलंबो को आओगा गने अखानेगा प्रोग्राम मा अरुणाचल प्रदेश पुलिस APP माचे डीजी प्याजा शिव दर्शन सिंह जामवाल बुद्ध ओबदा ला होगा। यूनियन स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री को कोमाने बुने निर्जुली माचे नेरिस मा अली प्रोग्राम अखगा मने मोमंगा ने अनिहु मे अनुभव में आयमुगा अंजे दू हामी दोने तोमिवे चिपवा लासे हा मा ईटानगर कैपिटल अधिकारी DC टोको बाबू में अब चीचा ओ बने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में आया आ प्रोग्राम है प्रभा एजी लाइबदा आ होगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO में कुमकुमे डिस्ट्रिक्ट माचे हुरी आतिपो बाचे हचे सा आहा अचला पुची जहला हो माचे ने तुला बचा है अजी मैं तिगा न बदा आ होगा। BRO को कोचे ही हो मगा RCC तो ने माउं बिवो ने मगर हो ताहो BRTF ने आयो बाबुदा लामी हुगा ने मनना महो सी समय अजी तिगा न बदा आ होगा महो अलि सामय प्रभु अजी तिहागा न बदा ने हुरिया ती कोचे मुमे लगादा आ होगा। एबो आ ग्लोसगोल अति को ने कॉमनवेल्थ गेम्स ताओ मगा अखा मगा बापा इनु एजा गाना सो मचिनु आ एमगा इंडिया मने अखा ने गेबा ने

0: मातापगा मचमा लगा अरुणाचल प्रदेश में चे पफुमपरी डिस्ट्रिक्ट में अना नांगा नाप्रा आयो मुंबो बया बोदो ने अबुलुचे एदो ने हवन्या मया वशता ने इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आई एम डी मच में ला होगा ने इस कमिंग कुंकु में ले परादा इसियांग लोहितो ने लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट आतिका मा बुए नाप्रा आयो शदा ला होगा आयम जमा एकिसा होलोमा डिस्ट्रिक्ट मा बुए आयो शदा ने IMD much me la hogane napra ayoga maho atikachi mume melo chijim na lagada ahoga etanisi idmismi aho alimao dabae echa akaswani itanagar dibugar nali idmismi program ma echamta ashe ahonso khia maho etani hendo asinda mi me ashine ga chashiji ahji
1: दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ईद मिश्मी श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

चलिए दोस्तों, बेहतरीन हिंदी फिल्म गानों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और शुरू करते हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आइए सुनते हैं पहला गाना, कहो ना प्यार है फिल्म से दिल ने दिल को पुकारा। इस गीत को

Then let's go for it.

दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना एआर रहमान की आवाज में माहिवे। इसके साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक दीदांजंग तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह।

तो दोस्तों अब मुझे यानी आपके रेडियो साथी आरजे दुनिया को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों एक बार फिर याद दिला दूं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे कांगसा श्रोताओं का समाचार।

आकाशवाणी इटानगर डिब्रुगढ़ मछुसा डुबा शशिसोम आगोस जलिंग रंगरूम तारीख पांग हजनेरा खोकरोक पांग आरो मछुरंग जा सौसाइटार मन कचे रुंगरंग रोकवांग कोनका मामाइर ग्लासगो हानंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 नंग इंडिया वंग खिलाड़ी हिंग र खेल प अहु तखोइरो फोर्थ रैंक नंग वंखाम नंगमुंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र खिलाड़ी हिंग मरण तहत इंडिया र गोल्ड मेडल प सेरुम खाग लाप्त नंगम मुल्ला मेडल प सुमसर तक उखाग लाभ खाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र सोशल मीडिया पोस्ट नंग खिलाड़ी हिंग मरण प तहत परजु नंगमुंग वंग खिलाड़ी हिंग र ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स नंग खेल प अहु तहोइरो सुसे तक उखाग मेडल्स लाभ खाम नंगमुंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मु रडॉप खिलाड़ी हिंग म रन प तहत परतुंग नंग आशुंग सुरकई वंग यूथ अफेयर्स ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया र फांद नंग बलिबाई खेल प अचय म गेम्स प तथुंग परजु इंडिया र कचाय लाग कॉमनवेल्थ गेम्स अत नंग मेडल प खुमसई दाय लाप्त संग नंग मचुला कॉमनवेल्थ गेम्स नंग खुमसई तक उखा मेडल्स लाप्त मो फांद अरुणाचल प्रदेश वंग मिस जनवरी डेट ताली नई मिस हाचु लम्बो प लदाख हावंग जंगस्कर हानंग हजसनद्रा सनसर सनद मेतरचो माउंट कुंड कानंग कुंगरग खाम अरुणाचल प्रदेश गवर्नर केटी परनाई र पन्युंग नई प सलंका त माउंट कुंड कानचोंग कुंगरग रौ स्टेट म रनहु जंगरंगो गवर्नर र फानतनंग अरुणाचल प्रदेश वंग पन युंग नई प अफंग लग इर कांचुंग नंग कुंगरग रो रे मानफान नंग पन मंग प तयंग रंग रो थ पन युंग नई प कांचु अहन कान नंग कुंगरग रो रे पोंफान दै पन सराई नई रबु प तखै रुंग रो गमनर र फान त नासा मुक्त अरुणाचल मंग नंग 10 करोर एडिशन फ्री प्लेज मेगा कैंपेन मंगरो स्टेट लेवल लॉन्चिंग प्रोग्राम पर मनीषा इटानगर ना जोलांग हानंग ब्रह्म कुमारीज राज योगा सेंटर नंग तथुंत इरे प्रोग्राम पर अरुणाचल प्रदेश होम मिनिस्टर ब्रह्म इंटर स्टेट बॉर्डर अफेयर्स ने पीएचई रा वाटर सप्लाई मिनिस्टर कयांग र मई मामा नातुंग र तफंग त परजु डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी सिफ दर्शन सिंह जामवाल प गेस ऑफ ऑनर जंगत परसा मामा नातुंग मयंग मसौ फानबाय तेनांग एडिक्शन फ्री स्टेट तयंग म अक्टोन रोरी लामरंग रा रुंग रोत परजु मई थमोंग सेंग र फान प फक्सा रंग जंगमु मरो जराव जचांग हेंग मरो त कैंपेन प ब्रह्मा कुमारीज राज योगा मेडिटेशन एंड डी एडिक्शन सेंटर नई नेशनल मिनिस्ट्री स्टाम कचू रो रे तथुंग त मेरा युवा भारत इटानगर र ड्रग्स फ्री इंडिया नई विकसित भारत 2047 तयंग रंग मंगरो मनीषा नेरजुली हा नंग नेरिस नंग नासा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान पर तथुंग त नंग वार्ष बंगारा वाकु अपन जाओ जचांग हेंग थोक त प्रयु नंगमुंग प ड्रग्स फ्री मुंग तयंग म रोग त मो फान त नंगमुंग व प महा नंग नासा मुक्त प्लेज प्रोग्राम तथुंग र थलिंग अगथोन रूरी प इतान

कैपिटल रीजन डेप्यूटी कमिश्नर तोको बाबूर तफाक्त पर जो हेल्थी नई रेस्पॉन्सिबल रा ड्रग्स फ्री सोसाइटी तयांग म सचारंग मरो महेंग मरो द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ र पांग हजा निरा ककरोक पांग जुलाई लिंग रंगसासी तै सा रंगपु छ खम पंगरो गरी हाय लोंगन त जगानंग 200 फुट बेली ब्रिज हाय मानरौरे कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट नंग होरी हानंग वांगर लंप तह जेक्त इर हाय प थिन खाम मै कारवांग नै अरेन फासा फन ततोक थान मरा इमरजेंसी सर्विसेस ताम कतंग तंगो फान द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन र रंग जेन म कसारौ नै खम्बा वंग खमरा म दिद्री लप डंग म अरोरा परजु हा प अलिंग खिदक नंग हाई फाउंडेशन प मान तुंगो रोग द परतुंग नंग इर हाई प मान र खाम होरी हा वंग किंग वन रन तहु द ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स पर मनई रंग जासो थुमत अरो थोवाने छी पांग हजाने राख सुमसे पांग नंग कॉमनवेल्थ गेम्स पर इंडिया नंग गुजरात कैपिटल अहमदाबाद हा नंग तथोंग छी ngo फाम द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी रो अरुणाचल प्रदेश वांग पापम परे डिस्ट्रिक्ट म रेड अलर्ट कुत परजु ईस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट म नै ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट म रा कुरुंग कुमे लेपारादा लोहित परम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ताम ऑरेंज एलर्ट कुत माम इरे डिस्ट्रिक्ट ताम नंग अखाव हा नंग रामो राफिक ने रंग हाइची जम अहन रंग जेंची मन अजांग मोरो त परम आईएमडी र स्टेट वंग बलांगसर बंगा खाल डिस्ट्रिक्ट ताम येलो एलर्ट डॉप कुत मोरो त अरो डिस्ट्रिक्ट ताम नंग तोंग र मयेंग प क्रेम द अरंग मोरो नै परम जम अरिंग रोंग तामवांग अचेई म फैनांग खोंगरंग जमु परम एजेंसीस ताम एडवाइजरी प सिलीरंग रारो मोरोक्त रुंगरंग इतान थुमरा

अभी आप सुन रहे थे तांगसा समाचार। आपको बता दें कि तांगसा श्रोताओं का कार्यक्रम हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स तथा DRM 666 किलोहर्ट्स पर अभी भी जारी है। आप सभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होते हैं दिल से दिल की बात। आप सभी सुनने वालों का इस तीसरी प्रसारण सभा में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। और इस सफर में मैं हूं आपकी, हम सफर आपकी अपनी रेडियो साथी नीत। श्रोता मित्रों, इस सभा की शुरुआत से पहले आप सभी की चहेती आरजे तुनिया का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी स्टूडियो की आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए और मेरे परिचय के लिए। जी हाँ श्रोता मित्रों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 4:28 हो रहे हैं। कहते हैं गूंज, जी हाँ कहते हैं कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है, इसलिए हमें अपना

0: कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। तो चलिए श्रोता मित्रों, इस सुविचार के साथ इस तीसरी प्रसारण सभा का आरंभ करते हैं और पेश करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: ईटानगर

दोस्त, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, साथ ही अपने सपनों की ओर बढ़ रहे होंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य का होना उतना ही जरूरी है जितना कि सूरज की किरणें सुबह के लिए। बिना धैर्य के न तो कोई काम सही से पूरा होता है और ना ही लक्ष्य हासिल होते हैं। जब आप कोई नया लक्ष्य बनाते हैं तो उसे पूरा करने में वक्त लगता है, लेकिन अगर धैर्य की कमी हो तो अक्सर लोग रास्ते में हार मान लेते हैं और सफलता उनके हाथ से फिसल जाती है। जी हाँ श्रोता मित्रों, आज कार्यक्रम के तहत हम बात कर रहे हैं धैर्य, धीरज, सब्र के महत्व के बारे में। फिलहाल अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के इससे पहले गीत का।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का ये पहला गीत। मैं हूं ना फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में। जी हां श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और कार्यक्रम के तहत आज हम बात कर रहे हैं धैर्य के महत्व के बारे में। श्रोता मित्र, मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, क्या आप इसे एक दिन में सीख पाएंगे? नहीं, इसके लिए अभ्यास और धैर्य चाहिए। अगर शुरुआती दिनों में गिरने से आप हिम्मत हार जाएं और सोचे मैं तो कभी सीख नहीं पाऊंगा, तो आपका सफर वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर आप मन में ठान ले कि मैं हर दिन कोशिश करूंगा, चाहे इसमें हफ्ते भर या महीना लग जाए, तो एक दिन आप मंजिल पा लेंगे। यही धैर्य है जो आपको आगे बढ़ाता है। कामयाबी के लिए धैर्य का साथ बनाए। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे इस खूबसूरत गीत को बजरंगी भाईजान फिल्म से जुबिन नौटियाल की आवाज में। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर बस इतना कहना चाहेंगे कि जीवन में धैर्य ही वो चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। हिम्मत और मेहनत के साथ धैर्य रखें, मंजिल जरूर मिलेगी। श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आगे आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। फिलहाल कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने सुश्री जनवरी ताले और सुश्री हाचू लोम्बो को लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र में 7,077 मीटर ऊंचे माउंट कुन शिखर को सफलतापूर्वक फतह करने पर बधाई दी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंकुमे जिले के हुरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क संपर्क व्यवस्था को सफलतापूर्वक बहाल किया। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी अरुणाचल प्रदेश के लगभग हर जिले के लिए येलो, 6 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज और पापुमपारे जिले के लिए अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता की संभावना। और 2030 अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक उल्टी गिनती शुरू। कल रात ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के साथ भारत को खेलों का बैटन औपचारिक रूप से सौंपा गया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई, जिसमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। बार बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही जब दोपहर 12 बजे प्रारंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टैटनी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने पर लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
1: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने सुश्री जनवरी ताली और सुश्री हाचू लोम्बो को लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र में 7,077 मीटर ऊंचे माउंट कुन शिखर को सफलतापूर्वक फतह करने पर बधाई दी। राज्यपाल ने उनकी इस उपलब्धि को राज्य के लिए अत्यंत गौरव का क्षण बताते हुए कहा है कि दोनों पर्वतारोहणियों ने अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही बनकर इस चुनौतीपूर्ण शिखर पर विजय प्राप्त कर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि माउंट कुन भारत की सबसे कठिन उच्च हिमालय पर्वतारोहण स्थलों में से एक है, जहां बर्फ से ढकी खड़ी ढलाने, खतरनाक हिमनद, पतली हवा और अप्रत्याशित मौसम जैसी कठिन परिस्थितियां पर्वतारोहियों की कड़ी परीक्षा लेती है। राज्यपाल ने कहा है कि यह सफलता असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प, सहनशीलता और मानसिक दृढ़ता का परिचायक है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले के खुरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण सड़क संपर्क व्यवस्था

0: को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया है। इसके लिए संगठन ने 200 फीट लंबा बैली ब्रिज स्थापित किया, जहां गत 11 जुलाई 2026 की रात आई अचानक बाढ़ में वहां का मौजूदा पुल बह गया था, जिसके कारण पूरा क्षेत्र अन्य स्थानों से कट गया, जिससे लोगों की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा आपातकालीन सेवाएं बाधित हुई। संपर्क बहाली का कार्य प्रोजेक्ट अरुणाक द्वारा मिशन मोड के अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच किया गया। 85 RCC और 756 BRTF की BRO टीमों ने लगातार हो रही भारी वर्षा, तेज नदी प्रवाह और अस्थिर मिट्टी जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जिससे पुल की नींव और पहुंच मार्ग के निर्माण में कठिनाई आई। इस बीच होरी के निवासियों ने संपर्क बहाल होने पर BRO के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये संपर्क उनके आजीविका और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों अपर सुबनसिरी, शियोमी और अपर सियांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही 6 जिलों ईस्ट कामेंग, कुरुंगकुमे, रेपारादा, ईस्ट सियांग, लोहित और लोंगडिंग के लिए ऑरेंज, साथ ही पापुमपारे जिले के लिए भी अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्षों के भीतर आधार सत्यापन अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया है कि पिछले 12 वर्षों में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मनाने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थाओं के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण उन्होंने उसे बड़े हमले से रोक दिया है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनती दिख रही है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर है। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र की निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: 2030 अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल रात ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में समापन के साथ भारत को खेलों का बैटन औपचारिक रूप से सौंप दिया गया। समापन समारोह के दौरान भारत ने अहमदाबाद के लिए विश्व को एक आर्थिक सांस्कृतिक आमंत्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें प्राचीन भारतीय दर्शन, समकालीन कलात्मक अभिव्यक्ति और सामृद्धिक सांस्कृतिक विरासत का सुंदर समन्वय देखने को मिला। इस प्रस्तुति के साथ वर्ष 2030 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी संस्करण की आधिकारिक यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसी के साथ ये समाचार

0: बुलेटिन समाप्त हुआ. नमस्कार.
1: दिस इज आकाशवाणी. द न्यूज रेड बाय हगे अनी. President Draupadi Murmu will begin a three-day visit to Odisha today. During her visit, the President will participate in a series of educational, cultural and official engagements in Cuttack, Bhubaneswar, Brahmapur and Taptapani in Ganjam district. The President is scheduled to inaugurate Jagat Guru Kripalu University at Cuttack today. Tomorrow she will travel to southern Odisha to offer prayers at the Ma Kanduni Devi temple near Taptapani before attending other official programs. Counting of votes for the by-elections to three assembly election constituencies is underway. In Bihar's Bankipur assembly constituency, Jan Suraj party candidate Prashant Kishore is leading by over 8,000 votes. In Gujarat's Manjalpur assembly constituency, BJP candidate Satendra Bhai is leading. In Madhya Pradesh's Datia assembly constituency, Congress party candidate Ghanshyam Singh is leading. Polling for these three assembly constituency were held on the 30th of last month. In Bihar, the by-election for the Bangipur seat was necessitated after BJP President Nitin Navin vacated the assembly seat following his election to Rajya Sabha. A Delhi court today acquitted former Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh and co-accused Vinod Tomar in a sexual harassment case filed by women wrestlers. Additional Chief Judicial Magistrate Ashwini Panwar acquitted ex-BJP MP Singh and Tomar, former WFI Assistant Secretary, in the case. The court had on July 2nd reserved the order for today after completion of the final arguments in the case lodged by six women wrestlers. In May 2024, a court had ordered the framing of a charge of criminal intimidation against Singh. It had, however, discharged him in a complaint filed by one of the six women wrestlers. The Delhi police had filed a charge sheet against Brij Bhushan Singh on June 15th. India has achieved over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges within 3 years since the launch of the digital pledge portal in 2023. Addressing the 16th Indian Organ Donation Day event in New Delhi, Union Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today highlighted that organ transplants in India have risen to over 20,000 annually over the past 12 years. Ms. Anupriya Patel also said that India ranks third globally in the number of organ transplants conducted after the United States and China. Coal production from captive and commercial mines stood at 14.78 million tons in the month of July, while coal dispatches reached 17.49 metric ton. Ministry of Coal informed that coal production registered a 9.61% year-on-year growth compared to July last year. The ministry noted that the performance highlights continued improvements in operational efficiency, enhanced mining productivity and more effective utilization of coal mining capacities across the captive and commercial coal mining sector. India's Unified Payments Interface recorded its highest ever monthly transaction volume in July this year, with 23.66 billion transactions worth 29.88 lakh crore rupees. In a social media post, the Prime Minister's office said that the performance marks a significant milestone for India's digital payments ecosystem. In Karnataka, 20 new ministers will be sworn in at Lok Bhavan this evening. After D.K. Shivakumar took oath as Chief Minister on June 3rd, 13 ministers were sworn in along with him earlier. With 20 ministers being inducted today, the cabinet maximum capacity of 34 will now be reached. The student protest in Jharkhand demanding a CBI probe into the alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations and strict action against those responsible entered its 10th day today. Despite difficult conditions, students from across the state continue their agitation, alleging that the OMR sheets in the 14th JPSC preliminary examination were tampered with, resulting in a major scam. JLKM leader Devendra Nath Mahato announced the launch of an indefinite hunger strike, saying the protest would continue until a CBI inquiry is ordered into the alleged JPSC and JSSC irregularities and strict action is taken against those responsible. Meanwhile, former JPSC chairman L. Khyangte, who has resigned from the post, is being questioned by the Jharkhand CID for the fourth consecutive day. That's all in this news bulletin. Namaskar.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। समाचारों के बाद आइए सुनते हैं नोक्टे श्रोताओं का कार्यक्रम।
3: अब आकाशवाणी ईटानगर दिबगरवा नुक्ति प्रोग्राम अधूरमजा वनबंगा सनपो तंगे नंगनुक्ति खुबुचे तटकत थेजा हुम्बा चा 3 तारीख अगस्त चंग खुबुचे कुदेपा किम किम तेसिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मा इंडियन कंटिजन नंग कंग्रेचुलेट हुनका ग्रास क्रो कॉमनवेल्थ गेम को इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस था दिको 4th नंबर नंग हु था। वांटे सोशल मीडिया पोस्ट को मिस्टर मोदी मंगे का अते इंडिया टीम को नंग अरंग प्राउड इंडिया में टोटल रुक रम वन को मेडल जेन का आरोकवा चीवान रंपा गोल्ड मेडल जेन का तेमा मेडल विनर है नंग हने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था कॉन्ग्रेचुलेट वन का। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मंगे का इंडिया स्पोर्ट पर्सन मा ग्लास्को कॉमनवेल्थ गेम को एक्सीलेंट परफॉर्मेंस वन का दिखो रुक रम वन को मेडल जेन लमा नंग कंट्री मिन पा रोशन वन का। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी प्रणायक मा मिस जनवरी तालीनिया मिस हाचू लोम्बोनांग कॉन्ग्रेचुलेट हुनका रनीमा लद्दाख जेंस्कार रीजन व माउंट कुन 7,071 मीटर नंग सक्सेसफुली सबमिट हुनका। गवर्नर मंगे का अर अचीवमेंट पमा पूरा स्टेट रंग या रंग प्राउड मोमेंट ते मंगे का वनीनी माउंटेनियर मा हिस्ट्री क्रिएट हुनका। अरुणाचल प्रदेश व फर्स्ट वोमेन अतो चैलेंजिंग पिक कंक्वेर हुनतेया ते मंगे का माउंट कुनपा इंडिया को वा नोक नोमा डिमांडिंग हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग डेस्टिनेशन चुन। स्टेट लेवल लॉन्चिंग इवेंट 10 करोड़ एडिक्शन फ्री प्लीज मेगा कैंपिंग नशा मुक्त भारत नशा मुक्त अरुणाचल बैनर गा मचोले का पर ब्रह्मा कुमारीज राज योग सेंटर जोलंग ईटानगर नंग ऑर्गेनाइज हुआ। और ओकेशन को होम इंटर स्टेट बॉर्डर अफेयर PHE and Water Supply Minister Mama Natung Chief Guest Dangwa Arako Director General of Police DGP Chief Darshan Singh Jamwal Pa Guest of Honor Dangwa Public Nang Address Ho Nong Ma Mama Natung Ma Yuthe Dang Substance Abuse Wa Dur Dang Rang Appeal Hon Ka Te Mange Ka Tanghu Ka Pledge Ka Plama Nang State Pa Addiction Free State Pona Rang Contribute Ho Nang Rang Eka Are Camping Pa Brahma Kumari Yiraj Yoga Meditations and डी एडिक्शन सेंटर गामा नेशनल मिनिस्ट्रीज कोलाबरेशन दमनांग ऑर्गेनाइज वन का आर कैंपिंग एम पा इंस्पायर सिटीजन नंग से नो टू एडिक्शन गा रंग दिको हेल्दी लाइफ सेट पा अपना रंग वन का। ड्रग्स फ्री इंडिया दिको विकसित भारत 2047 विजन पा पूरा हुआ रंग वांटे सिग्निफिकेंट स्टेप कप नोमा मेरा युवा भारत माई भारत ईटानगर Ministry of Youth Affairs and Sport Government of India khonang kamoi ka hane mama ja neris nirjuli nang nasha mukt yuva for viksit bharat sankalp abhiyan pa successfully organize hon ka are even ko cha banga rukni no maja youth he nya rang enthusiastic tam nang participate kawa youth he room lama drugs free tiko progressive nation bona rang hane commitment pa repeat hon ka आर प्रोग्राम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गाम शुरू हुन का नेशन वाइड कैंपिंग नशा मुक्त भारत फॉर विकसित भारत अर पार्ट आर प्रोग्राम व इम्पोर्टेंट हुन पर नशा मुक्ति प्लेज आर प्लेज पर डिप्टी कमिश्नर ईटानगर कैपिटल रीजन तोको बाबू मदी लाइका। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO मा कुरुम कोमे डिस्ट्रिक्ट हुरी इलाका व कनेक्टिविटी पर जोजांत संसद का BRO मा 200 फुट बेली ब्रिज बोनालमा मीयान हेची खोंपा शुरू देगा अर अन्यान ब्रिज पा अर थोन मंगा बोने का जुलाई ची वांते तारीख 2026 रंगपन को फ्लैश फ्लड दंगलमा ब्रिज पा पा ची हरवा अरे इंसिडेंट दिको अरे इलाका वा तोंगसोंग ते मीयान हे बाहित जागा हे दमनंग कनेक्टिविटी पा लचोतुवा मीयाने हने अलम सोमा इमरजेंसी सर्विस हे मिल लचोतुवा अर दिको प्रोजेक्ट अरुणे गामा BRO मा मिशन मोड दमनंग रिस्टोरेशन काम पर शुरू हुआ का हुरी इलाका नंग सोंगते मीयान हे मा BRO नंग न्या रंग दंग को आंगे का हने कनेक्टिविटी पंगाक सन था बेसिक सर्विस है जो जान था इजी में पहुंची तुए का। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD मा पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट रंग रेड वार्निंग इश्यू हुआ का ईस्ट कमिंग

अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से समाचार। पहले आपने सुना हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और अभी आप सुन रहे थे नोक्ते श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार शाम के 5:07 हो रहे हैं, और इसी के साथ ही चले इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। श्रोता मित्र, आज भी हम आपके लिए चुनिंदे गीतों के साथ एक प्रेरणादायक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाना चाहेंगे लबियापा फिल्म का ये गीत।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे लबियापा फिल्म से नकास अजीज और मधुबंती बागची की आवाजों में। तो चलिए श्रोता मित्र, अब समय हो चला है इस प्रेरणादायक कहानी का। श्रोता मित्र, पुराने समय में एक राजा के राज्य में विद्वान संत रहते थे। एक दिन संत अपने राजा से मिलने पहुंचे। राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाते समय उसे एक ताबीज दिया। संत बोले, जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हो और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है, तब इस ताबीज को खोल लेना। इसमें एक दिव्य मंत्र लिखा है, ये पढ़ लेना, लेकिन इसे बुरे समय में ही खोलना, ये बात ध्यान रखना। राजा ने ताबीज गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राज्यों ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। शत्रु काफी ज्यादा थे। राजा अकेला था, इस वजह से उसकी सेना हार गई। किसी तरह राजा अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। वो एक गुफा में छुप गया। गुफा में उसे शत्रु सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसे लगा कि अब मैं फंस गया हूं, सब खत्म हो गया, सैनिक बंदी बना लेंगे। तभी उसे संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था, ये समय भी निकल जाएगा। ये पढ़कर राजा को थोड़ा सुकून मिला। कुछ ही देर में सैनिक के कदमों की आवाज कम होने लगी। गुफा से झांक कर राजा ने देखा तो सैनिक उस जगह से काफी दूर निकल गए थे। राजा तुरंत ही गुफा से बाहर निकला और अपने राज्य में पहुंच गया। इस तरह राजा जीवित बच गया। श्रोता मित्रों, जीवन में अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं। सुख और दुख दोनों तरह के समय में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये समय भी कट जाएगा। अच्छे दिनों में ऐसे कामों से बचे जिनसे अहंकार बढ़ता है और बुरे दिनों में धैर्य से काम ले। तो श्रोता मित्र, इस बेहद ही खूबसूरत प्रेरणादायक, जी हाँ, कहानी यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे बैंड बाजा बारात। फिल्म का ये गीत सुनिधि चौहान और सलीम मर्चेंट की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ट्रैप। तो चलिए इसके साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी

श्रोतमित्र आप सुन रहे थे द किलर फिल्म से ये गीत केके और श्रेया घोषाल की आवाजों में। श्रोतमित्र इस गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम शाम की महफिल, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ यानी कि अरुण एफएम के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

आंखें भी होती हैं दिल की जुबा, बिन बोले कर देती हैं हालात ये पल भर में बया। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का पहला गीत हाशिल फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में।

इस बेहद ही खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और पलक मोचाल की आवाजों में आशिकी 2 फिल्म से। जी हाँ श्रोता मित्र, आप एक बार फिर से आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

चंदा तुझे देखने को निकला करता है, आईना भी दीदार को तरसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहे। जी हाँ श्रोता मित्र, इस खूबसूरत गीत को लिखा है इंदिवर ने और धुन दिया है MM करीम ने। जी हाँ, आप सुन रहे थे माफ कीजिएगा, कुमार सानू की आवाज में क्रिमिनल फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल। तो आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

इस गीत को आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में न्यूयॉर्क फिल्म से। जी हाँ श्रोता मित्र, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल का ये प्यार भरा एक खूबसूरत सफर यहीं पर समाप्त होता है। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि हिंदी फिल्म में गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो आप जुड़े रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल हम ले रहे हैं ब्रेक।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोतामित्र, आप सुन रहे थे हीरो फिल्म का ये खूबसूरत गीत अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। जी हाँ श्रोतामित्र, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम, और जिसके तहत हम आपको सुनवा रहे हैं हीरो फिल्म के गाने। आपको बता दें कि हीरो फिल्म 1983 में रिलीज

स्वीटी, ये एक्शन रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन सुभाष घाई ने किया था। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी। आपको बता दें कि जैकी श्रॉफ का बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म है जो कि सुपरहिट साबित हुई थी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म के गाने।

इस गीत को आप सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं हीरो फिल्म के सुपरहिट गाने। आपको बता दें कि इस सुपरहिट फिल्म के सुपरहिट गीतों को लिखा है गीतकार आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है प्रसिद्ध जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का एक और गीत और कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गीत पर आधारित कार्यक्रम, जिसके तहत आप सुन रहे थे हीरो फिल्म के गाने। इस आखिरी गीत को आप सुन रहे थे फोक सिंगर रेशमा की आवाज में। श्रोता मित्र, कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आगे आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: दौला करंक कॉमनवेल्थ गेम लो इंडिया 30 मेडल पानम लोक सिंगिंग 39 मेडल को पालंग कुला करंग अमन एम दग पा एमला पोकन दो लडक अमो लोक 7077 मीटर दूतक दोन ना माउंट कुन दूत एम अरुणाचल ओम अन्य जनवरी ताली कलंग हंसु लोम्बो के गेन नम गवर्नर केती पानायक बु बुनिक तयो लो असेंग इन्नम अगम एम पोलिक दो ओम अन्य सी अरुणाचल सौ करंग यालुम माउंट कुन दूत एम गेन नप इला अरुणाचल अमन एम कोम करंग अमन गुमो दुंग एम दो ला सिकना दूत कदो नम गेनम द अग आप बोते दलोक मई मसंग अदिंग एम कोम लंकन सुनप इदुंग एम लंग कोम गवर्नर बु पोकान दो ब्रह्मा कुमारी राज योगा सेंटर जोलंग ईटानगर लो मलो नशामुक्त भारत नशामुक्त अरुणाचल आरंग लोक कोरोल इंग ड्रग्स रागी गन्ने मोपुत नाम स्टेट लेवल कैंपेन पेबो को इतो पेबो डेलो होम मिनिस्टर मामा नतुंग बु पोंदो बोते पे आतो डेलोक डीजीपी मिगोम शिव दर्शन शिव जमवाल बु पोंदो कालिंग पे आतो मामा नतुंग बु अरुणाचल यूथ को तकाम एम ड्रग्स अति कदी लो इमम सुला इमा पे डेलोक अरुणाचल सिम ड्रग्स अतो कई मंगको स्टेट को पे इमो दो पे पोकान दो पेबो डेम ब्रह्मा कुमारी राज योगा मेडिटेशन एंड डी एडिक्शन सेंटर लंग नेशनल मिनिस्ट्री लको दोला दादी तकम ड्रग्स सिम पगला अकर असंग पे येनम मुबम दोला इगे बोतो तन्नक डानोलुलु तत्सिम आकाशवाणी ईटानगर लोक तत्पादुं ड्रग्स फ्री इंडिया दलोक विकसित भारत 2047 सिम मुबम दोला मलो नेरिस निर्जुली लो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरांग लोक मेरा युवा भारत ईटानगर ड्रग्स आईमाना अतो कदी सिम इक सुनम नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत संकल्प अभियान पेबो को इबोतो पेबो देलो लिंको पिल्गो कोलांग इंग अन्य गाद यूथ को लोग दुमिन ला इंडिया सिम ड्रग्स काई मांको कंट्री को पे इमोनाम अगेर लो तोलिक सुतो यूथ को कदी लोग ड्रग्स सो आई मानम लगंग एम पोकान दोला ड्रग्स मोपुद नाम अगेर लोकोम यूथ करंग अगेर एम इगे नप इलंका अमला इटानगर डीसी मिगोम तोको बाबू बु पोइल लिख दो 11 जुलाई 2026 युमे दलो कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट लोक हुरी दोलुंग लो दुना अमिकद लोक अन्योन गयोन सुको ब्रिज एम युपक बिला इनाम एम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 200 फुट बाइले ब्रिज को मोलिक बिलांग कुला गयोन सुदो कुपे इबी तोकु गयोन सुदो कुपे ब्रिज मोलिक बिकुनाम सिम बीआरओ टीम 85 आरसीसी दलो 756 बीआरटीएफ बोजेरु पदों असी दुख अदिर पाला प्रोजेक्ट अरुणन अरंग लोक मोइन तोकु हुरी दोलुंग लो दुना दादी तकम एकम सिकप ब्रिज मोलिक बिकुनाम एम बोत्ते रूप यिदग अगम एम पोकान दो मयूम के ग्लासगो लो कॉमनवेल्थ गेम 2026 इन नमलो आपना दितक 2030 तेलो कॉमनवेल्थ गेम एम इंडिया लोक अहमदाबाद लो लिंको इरुम नन्ना एम इगपनम एम कॉम ऑफिशियली इंगुन लेंतो 2030 दितक तेलो इंडिया लोक कॉमनवेल्थ गेम इगपनम इंगुन नप मयूम इंडिया दादी तकम एम अहमदाबाद लो यमरिक दोला इंडिया दोइंग कना नन पोनुंग एम कॉम लंकांतो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट रेड अलर्ट बीकन ला दलोक ईस्ट कमिंग कुरुंकुमे लेपारादा ईस्ट सियांग लोहित दलो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट कदि लो ऑरेंज अलर्ट बिलिग ला अपना लोंग लो डिस्ट्रिक्ट कदि सो दोमरियारी इला पदों एकोम बोजे पे ओला दुंग अमला बीकन दो देलोग रोंग इन कॉल पिलंगो डिस्ट्रिक्ट को येलो अलर्ट एम कॉम बिकन दोला असी कोरोंग अनिन लो दुना तकम अंसु कासु दोला दुदो पे देलोक अगेर अरो कामा पे एलो बेलो एनगो ला इपो मादो पे कॉम बिकन दो सातन्ना के दरसियुम के आदि लुतात देबोंग
1: अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आदि श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

सिनेमा ने दुनिया को बेहतरीन गायक तो दी हैं, साथ ही बेहतरीन गीतकार, संगीतकार और शायर भी। गुजरे जमाने में भारतीय फिल्मी गीतकारों, संगीतकारों, गायकों ने मिलकर जो समा बांधा था, उसमें डूबकर हजारों लोगों ने अपने खुशी और गम को बांटा है। अपने जज्बातों को गीत संगीतों में फिरोकर जीवन का सफर काटा है। हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे ही बेहतरीन गीतकारों में नाम शुमार है शकील बदायूनी का, जिनके लिखे गीतों से उनकी फिल्मों को रंग मिला करते थे। जी हाँ श्रोता मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार और बेहतरीन शायर शकील बदायूनी के। तो चलिए उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आपको सुनवा रहे हैं उनके द्वारा लिखा ये गीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म का ये खूबसूरत गीत, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि इस गीत के संगीतकार हैं नौशाद अली। श्रोता मित्रों, शकील बदायूनी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 3 अगस्त सन 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ था। उनके घर पर माहौल शिक्षा का था। बचपन में घर पर ही उन्हें अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा दिलाई गई। हालांकि शकील बदायूनी पढ़ाई में योग्य थे, किंतु मन उनका शायरी में लगा था। वे अपने चाचा जिया उल कादरी से प्रभावित थे, जो उस जमाने के मशहूर शायर थे। आगे की पढ़ाई के लिए शकील को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेजा गया। यहाँ भी उन्होंने शायरी का शौक

जारी रखा वो यहां होने वाले मुशायरों में जाते थे। अलीगढ़ में शायर अब्दुल वहीद अस्क बिचनोरी को शकील ने अपना उस्ताद बनाया और उनसे सीखकर अपनी शायरी को धार दी। अलीगढ़ में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 1942 से 1946 तक दिल्ली में सरकारी नौकरी में रहे और साथ ही मुशायरों और शायरी से भी जुड़े रहे। 1946 में वो एक मुशायरों में भाग लेने मुंबई गए, जहां उनकी मुलाकात संगीतकार नौशाद से हुई। नौशाद ने जब शकील की शायरी सुनी तो बहुत खुश हो गए और शकील को फिल्म निर्माता निर्देशक A.R. कारदार से मिलवाया। शकील ने जब अपना लिखा गीत हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल को मोहब्बत की आग लगा देंगे सुनाया, तो फिल्म दर्द में उन्हें गीत लिखने का मौका मिल गया। टुन टुन के गाए फिल्म दर्द के गाने अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का से शुरू हुआ गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद का साथ, जो आगे चलकर कमाल की जोड़ी साबित हुई। शकील बदायूनी के लिखे फिल्म दर्द के गीत इतने हिट हुए कि इससे उनका फिल्मी गीतकार का जो सफर चालू हुआ चलता ही रहा। आगे जिस भी फिल्म में शकील के गीत नौशाद का संगीत होता, उनका हिट हो जाना फिल्म बनते समय ही तय हो जाता था। तो चलिए आपको सुनवाते हैं अफसाना लिख रही हूँ ये गीत।

श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार और बेहतरीन शायर शकील बदायूनी की। श्रोता मित्र, आपको बताना चाहेंगे कि शकील बदायूनी ने अपनी जिंदगी के 20 साल फिल्मों को दिए, जिसमें तकरीबन 90 फिल्मों के लिए गीत लिखे। दीदार, मदर इंडिया, मुगले आजम, गंगा जमुना, मेरे महबूब, चौंदवी का चांद, साहिब बीबी और गुलाम, दुलारी, शबाब इत्यादि उनकी कई फिल्में हैं जो गीतों से सजी सुपर डुपर हिट फिल्में रही। उनके लिखे हिट गीतों की कतार लंबी है। आज की रात मेरे दर्द की सलामी ले ले, कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा, आज पुराने राहों से कोई मुझे आवाज ना दे, सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे, मन तड़पन हरि दर्शन को आज मेरे, तुम बिन बिगड़े सकल काज, अपनी आजादी को हम हर किस मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, जैसे एक से बढ़कर एक जबरदस्त गीत शकील जी के ही दिए हैं जो आज भी संगीत दुनिया की फिजा में गूंजते हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे इस बेहतरीन सदाबहार गीत को मुगले आजम फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, जिसे लिखा है गीतकार शकील बदायूनी ने। आपको बता दें कि शकील बदायूनी के लिखे गीतों के लिए उन्हें लगातार 3 बार फिल्म अवार्ड मिले। जी हाँ, 1960 में चौंदवी का चांद के गीत, चौंदवी का चांद हो या आफताब हो, 1961 में फिल्म घराना के गीत हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, और 1962 में फिल्म 20 साल बाद में गीत कहीं दीप जले कहीं दिल के लिखे गीतों ने उनके फिल्म फेयर अवार्ड की हैट्रिक की। एक मशहूर गीतकार बेहतरीन शायर के साथ शकील ने सुंदर गजल भी लिखे। मशहूर गजल गायक पंकज उदास ने उनकी कई गजलों को आवाज दी है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक और बेहतरीन गीत।

हिंदी सिनेमा जगत के लिए ये बड़ा आघात था जब महज 54 यानी कि 54 ईयर्स में ही शकील बदायूनी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, 20 अप्रैल सन 1970 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, उनका निधन हो गया। भारत सरकार की ओर से उनको गीतकारे आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया। श्रोता मित्रों, वे भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शायरी और गीत के लिए उन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में आदमी फिल्म से। जी हाँ श्रोता मित्रों, हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार और शायर शकील बदायूनी पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे निशे श्रोताओं का समाचार। फिलहाल सुनते रहें ये गीत।

시 아카즈마니 단어로 보고만 소폴가 알로 룸 나네세 오름가 거네바제 레메 타멜름 알메라 스룽가 지시암 아람 문은지 레마 단게데 따초바 스룽가 시부염 따빠 초레 접이나시 너마 아콤 헤르부바블라 글라스고 그다 로 커먼웰트 게임스 아프리카 미스 코콜로 바로트네 에프난 플레스 로 아데 코베리지민주 쿠남 레가바 바로트 로카 캐라돌라 레네 그드네 알바멘 사우드 쿠나 헴라 프롬스탄남 나인드르 모티 이야 짭타장암 아곰 함 짭쿠 헴 멘파토 오카 바로트 헤 골드 메델 우리 골라 옴 고바 파남 헴 멘프 라 치움 골라 코나 메델 아멘 헴 파남 레가바 바로트 로카 캐라돌라 레네 그드네 알바 파그드 쿠나 헴라 Making shark park kunam agom ham dar modi ya social media la post mulu kutri la jabr pukra bakhar me pa tha tom o kamidel amin pan mulu ne alba me sagat kuna ham la dar modi ya japta pukuna ma o sok tayo lo Glasgow ga Commonwealth Games lo mok ga lega ba chumum kula kuna go medel amin ham panen jinam lega ba bharat lok khela dola hilag melan me mudde ne alba me sa kura kamla president Narendra Modi morpu ye chab tap ko hal me pata to ok in kun ga commonwealth games lo medal amen ham bharat ha chumum go ba panam ham sini paven yala chumum gula kona medal amen ham pej pukuna ma sog lega ba alba meken shapa ga chik tu kuna ba kamla rebel ka sports ok youth affairs minister dr manshuk mandviya japta pukur bahab mem patha to lata gita ga janskar dio lo mt khun menk lo hajar kan acham kan ola kan mitar go ba muid lo alba gape ke bipe ganam la ga ba alba me sad kun kham la japta jangam agom kham dana january tali ne la dana hachu lombo punne arunachal pradesh te tiga gobono kreti parnai ke ya japta jangam agom kham jap kum khal mem pa to oksok ni eniga muid lo galak alba gacha jinam se state ne met mengam se da ba reji pukuna ba kham la gobono ya jap kri class so muid tiyu chimukun ham gapek yan ba sok ni anisi arunachal pradesh lok richo chik chik kun ba rigrik la yev yara ko ba pam ba doku ba rip ku ba kham la chapta pukuna ba kham to ok mt kun se bharat mok ga ara lo muir puti chum na ba rigrik la ni to tapam ha kaglu phuga dik la sangnam bunam ga duir kham khu no sa pa ba pa ma kri ka la ni to he la mo pu ha pam ga de kha kangnam ka to ba la honam ho to ba hul ku ko ku muid go ba red ku na kham me pa tha to o ka sigam ri ku lo so ka ni dom e ni ga ala ba ga pe gu pe ku ga nam si dum po ha ala ba mi ki me la ga gri ku la ke le ala ba mi mi shi na ba red ku na kham na governor ya chapta pu ku na ba kham to मोर्ग दुन आलहो ईटानगर जोलांग ब्रह्मा कुमारी से राज योगा सेंटर लो नशा मुक्त भारत नशा मुक्त अरुणाचल आरा लोक री करोड़ एडिशनल प्री फ्लाइट मेगा कैंपेन का स्टेट लेवल लगा इवेंट में नाम हम लंच मोलंजित कुमार में पार्ट ऑफ और सिग्नल आलोलो स्टेट के होम मिनिस्टर नर्म मामा नाथों यानी नव और डायरेक्टर जनरल पुलिस नर्म सिव दर्शन सिंह जमाल ये नील लोग नव रिलीज के नाम हम में पार्ट था तो ok signa alolo narma mama na thung ye do kum ne ni gi de ne aw ma jap ke la red kula so si cha ge cha de ne ni pa ya pa ge te ne alman te dik du dik ku ne yara sim do ge te ge te ma ba istet lo so ka alman te dik du dik ku ne yara sim do ge te ge mo ma do ku ba tor ge dar ge nyat ku ka ha ba jap ke na ba ha to ok alman te dik du dik ku ne yara ha ma do ge te ge ma ge re kla si go ge go kham si ken ge ken al ba shi la ge la ju ka ha ma ni ge te ne tum sir kano nad ko ba sok ka program campaign ham national ministry se ga ajan ba Brahma Kumari se yoga meditation ok the addiction center ka ri go pukuna ba ham me pa ta to no shi shi pu shi ma khaz ba ni ta no pukum lok ka thal to nya to drug free india ok vikshit bharat at the rate of 2047 mera yuva bharat itanagar kham alaba retirement or la रिम नाद कुबसो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ
Yut APR ka sports ga ara lo ka mor ga duñ al ho nirjuli ga nerist lo bishi bharat sankalp abhiyan ga lega ga nasha mukt yuwa ha mrik pukna ba khol me pa to ok sikne event alo lo chibri ang gola chemi go ba ni pa ya pa gud ga pa da pa nya grik la so alman tedik tu de kuna yara ha rega da ga ma da bala mokham alaba siling gren ga da ku ba rigo mengo ha akel go ba ribam pa ba do ku ba ulu se agom ha lu kur kur me sinya pukna ba khol me pa ta do ok promistan dharma modi ga विकसित भारत लेगा नशा मुक्त युवा कैंपेन हम लांची मोलंजिना लेगा बस एक नरिगो मेंगो हम रिग जिप कुमा ऑक्सो का प्रोग्राम हम रिग को का आगो लो का आगो आमलु हम जापा जिला कैपिटल ग डीसी तोको बाबू या रेड कोला गोरालो अलमंतिरिक दुधिक कुने यरां हम दोग तेग मोमा देव ला उग गा सेवो ग गो हम अलव सेग ग दोको बसो का प्रोग्राम लो रेपा दापा न्याने निग दिने कोसम क्वा हम तुम पुकन मकबल में पा था तो कुरुंकुमा डिस्ट्रिक्ट ग हुरी लो गुलग दब रेने चिमरे एनी मितार गोबा आसो कुन कोरो सोम खम सोक इन कुन टेलीफोन ग अलो लुरी गोरा लोके नन आई हो सिविक निसिग दीपक जिनाम खम बोर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ह अलब मोतेन मोम जिगे कुबा खम नेम पा दो ओक सोक कोरो सोम ह दुक मामे नि गिर ह अलब गको गपेग लमा ग दिक ला द्रम थेनम ग युक यारा खम चिन बगलिक बगला

अभी आप सुन रहे थे निश्चित श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि निश्चित श्रोताओं का कार्यक्रम हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स तथा DRM 666 किलोहर्ट्स पर अभी भी जारी है। आप अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:10 हो रहे हैं। श्रोता मित्र, हिंदी फिल्में गीतों के सफर को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत कुणाल गांजा वाला की आवाज में।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से ये बेहद ही खूबसूरत गीत मोहम्मद फैज की आवाज़ में। आपको बताते हैं कि आप बने हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 MHz पर, और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। लीजिए प्रस्तुत है अगला गीत धुरंधर फिल्म से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम। इस गीत को आप सुन रहे थे मिमी फिल्म से श्रेया घोषाल और अन्य साथियों की आवाजों में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:35 हो रहे हैं। तो श्रोता मित्रों, हिंदी फिल्मी गीतों का ये सफर आगे भी जारी रहेगा, तो आप बने रहें हमारे साथ।

अजनबी फिल्म का ये सदाबहार बेहद ही उम्दा गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल आवाजों में। श्रोता मित्रों, आगे आपको सुनवा रहे हैं आंधी फिल्म का ये बेहद ही बेहतरीन गीत।

फिल्म का ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। श्रोता मित्रों, चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवा रहे हैं आपकी कसम, फिल्म का बेहद ही खूबसूरत गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में।

0: अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं।
1: श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे सदाबहार गीतों का। जी हाँ, इस आखिरी गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आन मिलो सजना फिल्म से। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के ठीक 8 बज रहे हैं और इसी के साथ ही आगे आप सुन पाएंगे अरुणाचल प्रदेश की विविधता को दर्शाता कार्यक्रम अपना गीत।
2: नई आशा और अटूट विश्वास के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं आपके रेडियो साथी गैर अत आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ज पर। उम्मीद आप सभी की सलामती की, आशा कुछ और पल आपकी जिंदगी में खुशियां भरने की और विश्वास हर दम आपके साथ जुड़ने का। जी हाँ श्रोताओं, जब भी कार्यक्रम अपना गीत लेकर आती हूँ, ये जरूर सोचती हूँ कि आप अपने ही प्रदेश के गीतों को सुनकर कुछ अपनी पुरानी यादें ताजा करते होंगे तो कुछ आज के संगीत पर धुन मिलाते होंगे। और इसी आशा के साथ लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, मेडिको मेंजो की आवाज में ईदू गीत।

सोकेप क्री द्वारा गाए गीत आप सुन रहे थे मिजू मिश्मी भाषा में। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत निशी भाषा में, और आवाजें हैं तोको तेनी और यामी लाजी की।

दोस्तों, हमारी सोच, हमारी चाहत और कल्पना की सीमा ही क्या होती है। सोचो, अगर हम एक तितली होती तो क्या करते? बेशक खिले हुए फूलों की क्यारियों में जाते, उनके रंगों के साथ खेलते, रस का आनंद लेते। और इनसे भी मजेदार बात यह है कि ये जो चाहत है ना, अक्सर कई लोगों की एक सी होती है। जी हाँ, चाहतों की पूरी लिस्ट के साथ पेश है अगला गीत, गालो भाषा में झुमके नरालिन की आवाज में।

श्रोता कापहांग सोसिया द्वारा गाए इसी नोक्ते गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी आशा के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: And that was today's playlist. I hope these upbeat tracks brought some extra energy and excitement to your day. Music is meant to be enjoyed, and this song certainly knows how to keep the good vibes. So stay tuned tomorrow, same time, same station, for great music ahead. This is Coco signing off. Keep listening to Akashvani Itanagar. Bye-bye.
1: अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के ठीक 9 बज रहे हैं। और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बीते जमाने के अनमोल गीतों का खजाना। तो चलिए श्रोता मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और धुन दिया है एस डी बर्मन ने।

0: ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, ज्योत के प्यासे मेरे नैन बिचारे, भोर भी आस की किरण ना लाए। जी हाँ श्रोता मित्रों, इस बेहतरीन गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से। जी हाँ श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। लीजिए प्रस्तुत है अगला गीत जाल फिल्म से।
1: हम दिल नजराना दिल का

0: मम्मी को मत घेर जरा,
1: हम सब चोर हैं समझ का है फेर जरा,
0: चोर सारी दुनिया हमी को मत घेर जरा,
1: हम सब चोर हैं समझ का है फेर जरा,
0: चलता है जले कोई यहाँ है फिकर किसे,
2: आज का ठिकाना करो कल की खबर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। इस गीत का आप सुन रहे थे एक ही रास्ता फिल्म से उषा मंगेशकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। चलिए श्रोता मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आवाज़ फिल्म का गीत।

इस गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आवाज फिल्म से। श्रोता मित्र, इस गीत के साथ अब हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के समापन पर आ पहुंचे हैं और साथ ही आप सभी से विदा लेने का वक्त भी हो चला है। उम्मीद है इस प्रसारण सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सभी को पसंद आए होंगे, जिसे आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता, साथ ही अन्य सहकर्मी। जाने से पहले ये भी बता दें कि हमेशा की तरह आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से FM गोल्ड के कार्यक्रमों को, तो आप जुड़े रहें अरुण FM 103.1 MHz पर। और हमेशा की तरह फिर होगी आपसे मुलाकात कल प्रातः 5:48 पर, यानी हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति। आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, ओटीपी का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहां मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-07-1-2371-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इस ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी है? डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगा कर आता है।
0: जी,
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम, जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं
0: जी,
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो AI द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज होती है वो AI द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है और

0: अब जो ठगाई करनी है
1: जी
0: वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
1: तो पकड़ नहीं
0: आप तक पहुंच नहीं
1: पाएगी
0: और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
1: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
0: तीन रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए,
1: जी,
0: क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन ये है कि आज हमारा जो ना COVID-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि दो चीजें COVID-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है।
1: जी,
0: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और यही कारणवश है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हो चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी OTP दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930
1: जी,
0: 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है ताकि अगर आपके यहां कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है।
1: जी,
0: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
1: जी।
0: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए, बिना थाने जाए हुए आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीजें आप याद रखिए, 1930 1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं। एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी,
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूं, विक्टिम बन गया हूं साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव हैं और मोर इम्पोर्टेंट, सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछे क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से।
1: जी
3: सर, मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है, ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है?
0: विपिन जी, आज

0: निजता के अधिकार का हनन होगा और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं
1: जी
0: और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब FD 7% देती है और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 3% 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं है, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है
1: पकड़ने के लिए।
0: अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
1: जी
0: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए कर 12,300, तो भैया
1: पहले ही काट लिया।
0: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने
1: जी
0: ये भी
1: जी
0: काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12% इंटरेस्ट।
1: हो गया
0: तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं, प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार
2: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
1: जी सवाल पूछिए।
2: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
0: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है।
1: जी
0: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर पकड़े हो गए और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं, अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत, शक्की हो जाइए। दूसरी आदत, कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक के दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की। चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो, कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें। अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशन होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है, आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है, आस्था ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच है जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, अमित उपाध्याय। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
3: जी नमस्कार विशेषज्ञ जो भी हमारे टीम में है, मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी रूप में इसको सर्कुलेट करके बना दिया था, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो

0: जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है हम लोग को पीएफ करता है, और वो पैसा इनसिक्योर हो जाता है, उसको लेकर थोड़ा सा।
1: देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की गाड़ी कमाई आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपकी पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं। आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पे जो दूध है आके पी जाएगी,
2: पी ही जाएगी जी।
1: तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूँ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हो। इसके अलावा सावधानी सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूल मंत्र रहेगा।
2: बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से।
3: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर को भी बहुत बहुत नमस्कार
2: जी। नमस्कार जी।
3: और सर मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट की अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती है हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से, या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं ना रोक टोक की, तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं, क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, हत्याएं कर रहे हैं ये लोग ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या ये?
1: देखिए बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी, लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है, इस कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी इसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी जरा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नजर नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कॉपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
2: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा।
1: जी,
2: एक और श्रोता जुड़ गए हैं।

0: हमारे साथ महाराष्ट्र से विजय कुमार। विजय जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है।
1: नमस्कार
0: जी।
2: जी नमस्कार,
1: मैं विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवार छत्तीसगढ़ जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी
1: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
0: जी
1: मेरा बटन का फोन है।
0: वेरी गुड।
1: और ये बटन के फोन में धोखाधड़ी हो सकती है, ये सवाल मेरा है।
2: देखिए, धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल,
2: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए। तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर भेजते हैं, बेचते हैं। और फिर यही कारण वर्षे, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूं, उन्हें कह रहा हूं कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि सर बॉम्बे की चीप फ्लाइट ले लीजिए या ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तब वो फीचर फोन होता है। फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
0: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं? और 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
2: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
0: जी,
2: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है। कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला, बैंक
0: में जाना चाहिए।
2: भाई बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आप क्या फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
1: जी, मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
0: जी नमस्कार।
1: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं, यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाए, थोड़ा सा बताइएगा।
2: देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिला हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहे और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है,
0: जी
2: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है।

0: अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए, और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है ये इंटरमीडियरीज है, उनका दायित्व तो बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व तो उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है। और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलिजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है, यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत, और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजेक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
1: बिल्कुल, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
2: जी जी नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं, अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: जी जी सवाल पूछिए।
2: जी प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
0: जी,
2: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें, अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
0: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपको मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं, तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ही होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फोन चुराते हैं, फिर आपके नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं, और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंट में जाने हैं, आपके फोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है, एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफकोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है, तो आप इसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ब्लॉक करवाना जरूरी है और डुप्लीकेट सिम बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
1: जी,
3: और मेरा ये प्रश्न है जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
0: देखिए अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों आप आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए 3 बातें। पहला, कोई भी ओटीपी सीवीवी पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे

0: क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का, जिन हमसे आज जुड़े हैं, और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाले विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रवारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी है। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतेगोड़ा ने आज शपथ नहीं ली है। एक अन्य विधायक मनकला वैद्या की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड

लैंड और बिहार में अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता झाकड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। अब उनकी नजर 2026 एशियाई खेलों में शीर्ष 10 पर अपनी जगह बनाने पर होगी। साथ ही वे 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक पक्का करना चाहेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Tamil Nadu government alleges that the quantum allocated to it by the Kaveri Water Regulation Committee, as well as that released by its neighbor Karnataka, was far less. A committee meeting held on the 28th of last month directed the Karnataka to release 3,500 cubics for 15 days starting 29th of July, an order which was upheld by the Kaveri Water Management Authority later. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today held a meeting with Uzbekistan's Foreign Minister Bakhtiyor Saidov in Delhi. He highlighted that bilateral relations between India and Uzbekistan have expanded over the years and span a diverse range of domains today. Mr. Saidov also called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. Heavy rainfall is also expected in Arunachal Pradesh, Nagaland and Bihar over the next 2 days and in Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Ladakh, Uttar Pradesh during the next 3 to 4 days. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने फिर गोलीबारी की। ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्धारित वार्ता के दावे के विपरीत अमेरिका के साथ जारी किसी भी वार्ता से इनकार किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। पीओजेके से मिली रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर की कोशिशों से हुई बातचीत के बाद उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित बड़े हमले को रोक दिया है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इस दावे को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ कोई वार्ता नहीं हो रही है और न ही कोई बैठक तय है। उन्होंने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को छोड़कर बाकी सभी वार्ताकार ईरान में हैं। बघाई के अनुसार इस समय केवल ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी है। दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: रोम स्थित रूस के दूतावास ने मॉस्को के एक रेस्तरां में हुए बम विस्फोट के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। दूतावास ने इसे रूस में रह रहे इतालवी समुदाय को डराने का प्रयास बताया। दूतावास के अनुसार शनिवार रात हुए इस विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इस घटना को क्रूर आतंकवादी हमला बताया। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस आरोप पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के कई क्षेत्रों में सैन्य, ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर व्यापक ड्रोन हमले किए हैं जिनमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना ने एंगेल स्थित उस सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया जहां रूस के लंबी दूरी के बम वर्षक विमान

0: तैनात हैं। इसके अलावा सारातोव के एक तेल शोधक संयंत्र पर भी हमला किया गया। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उसकी सेना ने रूस के पश्चिमी कलुगा क्षेत्र में तेल डिपो पर हमला किया, जिससे वहां आग लग गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री ओडिलोविच और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वास्तुकला, भाषा, भोजन, संगीत और धार्मिक परंपराओं में साझा विरासत ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत किया है। दोनों देशों के हजारों अधिकारी, पेशेवर और छात्र एक दूसरे के देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव के साथ बैठक के दौरान अपने संबोधन में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन सहित कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान सरकार और जनता द्वारा आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए उठाए गए दृढ़ रुख की सराहना करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग एवं व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, संपर्क, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस बातचीत का उद्देश्य भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
1: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब देश एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक आज लखनऊ में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के साथ नीति निर्माता, विशेषज्ञ, शिक्षाविद और अन्य क्षेत्र के लोग शामिल हुए। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। तन्वी ने कल ही समाप्त हुए ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। एक रिपोर्ट।
2: ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। उनके अलावा अनमोल खरब, मालविका बंसोड, इशरानी बरुआ, श्रेयांशी वली शेट्टी, रक्षिता रामराज, अश्मिता चालिहा, तान्या हेमंत, आकर्षि कश्यप और मानसी सिंह भी महिला सिंगल्स दल का हिस्सा है। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, थारून मन्नेपल्ली, मिथुन मंजुनाथ, रौनक चौहान और सनी दयानंद पर नजरें होंगी, जबकि एस शंकर सुब्रमण्यन और तुषार सुवीर क्वालिफायर के रास्ते मुख्य ड्रॉ की राह तलाशेंगे। भारत ने पुरुष डबल्स में 3 और महिला डबल्स में 2 जोड़ियों को उतारा है, जबकि मिक्स डबल्स में भारत की 3 जोड़ियां मैदान में हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं दिव्या तोमर।
0: युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया।